0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच गरीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र मजबूत, सक्रिय और समयबद्ध है। उन्होंने न्यायपालिका में लगातार सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित 6वें राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार को नियमित प्रक्रिया का होना चाहिए। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी FM बठिंडा 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते इस वेले तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।

0: आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 MHz ते तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।
1: सुनते हैं भगती रचना जिसनू आवाज दिती है अनुराधा पोड़वाल ने।

मालूम भी है कि ये मुमकिन नहीं, मालूम भी है कि ये मुमकिन नहीं, मगर एक आस सी रहती है कि वो याद करेगा।

जी हाँ दोस्तों, 101.1 मेगाहर्ट्ज़ से शुरू हो चुका है दोस्तों प्रोग्राम सजरी सवेर का ए सफर। और अज दे हस्ती इस प्रोग्राम दे सफर विच मैं तुहाड़े नाल रहांगा, तुहाड़ा अपना रेडियो दोस्त, इस प्रोग्राम का होस्ट तुहाड़ा अपना आरजे पवन।

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना मिति 16 सितंबर दिन बुधवार नूं शाम 5:30 बजे।

और आज का दिन साथियों बहुत ही एक यादगार दिन भी है 15 सितंबर। जी हाँ जी, मैं 15 सितंबर दे इस दिन की गल करा तो अज के दिन यानी कि साढ़े दूरदर्शन की शुरुआत हुई सी। जी हाँ, सो दूरदर्शन की शुरुआत के लिए इस दिन भी मनाया जाता है। बेशक साथियों अजकल बहुत टैलीविजन चैनल का चलन शुरू हो गया। मौजूदा समय की मैं गल करा तो लगातार इस दे विच बहुत सारे टीवी चैनल जिहड़े आ रहे ने, पर साथियों भारत के मनोरंजन जगत विच दूरदर्शन का अपना एक अनोखा इतिहास रहा है। बिल्कुल जी, भारत विच टैलीविजन के इतिहास की कहानी दूरदर्शन के इतिहास तो ही शुरू होंदी है। अज दूरदर्शन के नाम सुनदिया ही बीते दियां बहुत सारिया गल्लां याद आ जांदियां ने, भावें अज टीवी चैनल के प्रोग्रामों का हड़ आ गया, फिर भी दोस्तों फिर दूरदर्शन की पहुंच नाल मुकाबला करना किसी के बस की गल नहीं है। जी हाँ, 15 सितंबर 1959 नूं दिल्ली विच अजमायशी आधार ते कीती गई सी, उदों तो ही इस दूरदर्शन दिवस दे तौर ते इस नूं मनाया जांदा है। शुरुआत विच दोस्तों इसका नाम टैलीविजन इंडिया दिता गया सी, बाद विच 1975 दे विच इसका नाम हिंदी विच दूरदर्शन रखिया गया, और फिर 1986 च दूरदर्शन तो शुरू हुए हर एतवार दे प्रोग्राम रामायण अते महाभारत दे प्रसारण दौरान देश दियां सड़कां ते कर्फ्यू वर्गा सन्नाटा जिहड़ा ओह छा जांदा सी, क्योंकि लोग अपने अपने परिवार नाल इकट्ठे हो के यह टीवी प्रोग्राम देखते सन। बिल्कुल साथियों, प्रोग्राम खत्म होने तो बाद बहुत सारे लोगों की यह आस्था भी सी कि हर एपीसोड तो बाद घर दे विच पूजा की जाती सी। खैर जी, यह सफर जिहड़ा दूरदर्शन का उसी तरह चलता रहा। साल 1975 तक यह महज 7 शहरां तक ही सीमित सी, पर जी दूरदर्शन की विकास यात्रा बेहद हौली सी, पर 1982 विच रंगीन टैलीविजन के चलन मगरों लोगों का रुझान ओह टैलीविजन प्रति होर भी वध गया सी। और दोस्तों समय समय से वक्त के बदलते नाल जिहड़ा दूरदर्शन दे दा विस्तार हुंदा रहा, राष्ट्रीय खेडां जिहड़ियां ओह प्रसारण होण लगियां, जिस करके लोकां दा रुझान है होर भी वध गया। जी हाँ, 15 सितंबर दे दिन दस्तों बहुत सारे जिहड़ी महान शख्सियत ने उन्होंने भी अज जन्म लिया। जे मैं गल करां साढ़े राजनीतिक राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे ने जी, भुपिंदर सिंह हुड्डा, उन्होंने भी जन्म साथी 15 सितंबर 1947 हो। साथियों भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा 1986 15 सितंबर 1986 उन्होंने जन्मदिन जन्म होया।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना मिति 15 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:30 बजे तुसी सुनोगे सिलसिला छावां ठंडियां ने बोर्ड दियां, जिस विच मेहमान होंगे उग्गे चित्रकार श्री केवल कृष्ण, मेजबान रहेंगे संदीप शेरगिल, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना मिति 15 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:30 बजे प्रोग्राम छावां ठंडियां ने बोर्ड दियां।
4: आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 MHz से तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम सर्जरी।

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना मिति 16 सितंबर दिन बुधवार नूं शाम 5:30 बजे।

मुख्य समाचार। सरकार ने कहा 2,000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक

0: 2,000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप होंगे। बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद यूपीआई लेन देन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
2: 2 दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्री और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $8.66 अरब से घटकर वर्ष 2025-26 में $7.95 अरब रह गया, जो 8.22 आज समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चे शामिल हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और दक्षिण अमरीका के प्रमुख व्यापार समूह मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक

0: से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
2: Given a choice, a judicial officer,
3: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
1: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश

0: मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नव भारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की ये खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, 2000 रुपए तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। UPI payments of up to 2,000 rupees to remain free of bank charges. World Circular Economy Forum 2026 to begin today at Gandhinagar in Gujarat. India and Canada begin next round of talks on proposed trade pact. Chief Justice of India Justice Suryakant says mechanism developed by Supreme Court and High Courts to deal with complaints against judges is robust and very responsive. CBI registers FIR in celebrity manager Disha Salian death case. And in men's cricket, second T20 international between India and Afghanistan to be played this evening in Delhi. And now the news in detail. Government has notified rules specifying that banks and payment system providers cannot impose charges

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवियां खबरां। सरकार ने कहा कि 2000 रुपए तक दे यूपीआई भुगतान ते बैंक कोई चार्ज नहीं ला सकते। प्रतिष्ठित वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 सम्मेलन आज तो गांधीनगर च शुरू हो रहा है। भारत ते कनेडा विचकार तजवीजशुदा व्यापक व्यापार समझौते ते गलबात दा अगला गेड़ नवी दिल्ली च शुरू हो गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जजां विरुद्ध शिकायतों के निपटारे लिए सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्टां वालों विकसित प्रणाली नूं मजबूत ते कारगर दस्सिया है। ते भारत ते अफगानिस्तान विचकार दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच अज दिल्ली विच खेडिया जाएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। सरकार ने कहा कि बैंक यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई या रूपे द्वारा संचालित डेबिट कार्ड राहीं किए गए 2000 रुपए तक के लेन देन या भुगतानों ते चार्ज नहीं लगा सकते।

जी हां श्रोत्यो, बाजरे दा सिट्टा असां तली ते मरोड़िया, इसे सिलसिले विच पेश है जी अगला गीत एमी विरक ते मन्नत नूर दी आवाज विच, फिल्म हरजीता विचों। गीतकार ने हरमनजीत अते संगीतबद्ध कीता है जी गुरमीत ने।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुने श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाजों में भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना। प्रसून जोशी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ।

दोस्तों, भारत में प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत के महान अभियंता और राष्ट्र निर्माता भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया जी ने अपने अभियंत्रण कौशल, दूरदृष्टि और अनुशासन से आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभियंता दिवस उनके योगदान को स्मरण करने के साथ साथ देश के सभी अभियंताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और प्रेम रतन धन पायो, इसका शीर्षक गीत आपको सुनवा रहे हैं पलक मुछाल और साथियों की आवाजों में।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहे, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, इस संदेश से ठीक पहले आपने सुना था बेशरम फिल्म का गाना, अमितोष नागपाल, सुजीत शेट्टी और रणवीर कपूर की आवाजों में। अब आपको सुनवा रहे हैं एक पारंपरिक रचना जिसे गाया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने, संगीतबद्ध भी किया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने ही। फिल्म का नाम है जुग जुग जियो।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश पद्मावत फिल्म से आवाजें श्रेया घोषाल और सुरुख खान की, एम तुराज के बोल और संजय लीला भंसाली की है तर्ज।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जो विज्ञापनों की दुनिया से फिल्मों की दुनिया में आया और जिसके गाने सुनना आपको

0: जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे गीतकार की जिसके शब्दों में लालित्य है, कविता है और है जज्बात का समंदर।
1: मैं कभी

प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1971 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें लिखने पढ़ने का शौक रहा और आगे चलकर उन्होंने दिल्ली के एक संस्थान से एमबीए की। आगे चलकर वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने लगे। लिखने का शौक तब भी जारी रहा और उनकी कॉपी राइटिंग में लिखने का वो शौक झलकता रहा।

प्रसून जोशी की किताब भी छप चुकी थी। इस किताब का नाम था मैं और वो। जब ये किताब छपकर आई तब प्रसून की उम्र केवल 17 साल थी। कई बरस तक प्रसून एडवर्टाइजिंग की दुनिया में सक्रिय रहे। उसके बाद उन्होंने गायिका शुभा मुद्गल के लिए कुछ एल्बम के गीत भी लिखे। फिल्मों में उनका पहला कदम था फिल्म लज्जा के जरिए। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म के कुछ गाने प्रसून जोशी ने लिखे थे। इसके बाद उन्हें यश चोपड़ा प्रोडक्शंस की फिल्म हम तुम में गाने लिखने का मौका मिला। हम तुम के गाने बहुत चले।

इसके बाद तो जैसे मुंबई फिल्म जगत में प्रसून जोशी के कदम जम गए। उन्होंने फिल्म फना के लिए भी गाने लिखे और इस फिल्म के सारे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। प्रसून जोशी की सबसे बड़ी खासियत है वो जिंदगी के बहुत मामूली से जज्बात को पकड़ते हैं और अपने शब्दों के जरिए उसे एक खास रंग दे देते हैं। उनके गीत दिल को छू जाते हैं। फिल्म फना का ये देशभक्ति गीत सुनिए, ये उस दौर का गाना है जबकि देशभक्ति के बहुत नगमे नहीं आ रहे थे। नई फिल्मों में ऐसे गानों की जगह ही कहां बनती है, पर प्रसून जोशी ने अपनी कलम के जादू से इस गाने को अनमोल बना दिया।

प्रसून जोशी ने इसके बाद फिल्म रंग दे बसंती की पटकथा भी लिखी और इस फिल्म के गीत भी रचे। रंग दे बसंती अपनी तरह की एक अनमोल फिल्म थी, सबसे अलग, और इस फिल्म का असर भी बड़ा गहरा था। जरा इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो आपके दिल की गहराई तक उतर जाएगा।

आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर जब बनी तो इसके गाने लिखने की जिम्मेदारी मिली प्रसून जोशी को, और इस फिल्म के लिए प्रसून जोशी ने कुछ अलग ही गीतकारी की।

इस फिल्म के इस गाने के लिए प्रसून जोशी को मिला सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार। आपको बता दें कि प्रसून जोशी कुल 2 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। तारे जमीन पर के अलावा फिल्म चिटगांव के एक गाने के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था।

जुलाई 2013 में आई फिल्म भाग मिल्खा भाग, इस फिल्म की कथा, पटकथा, संवाद और गीत प्रसून जोशी ने लिखे थे। इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो फिल्म का शीर्षक गीत तो है ही, साथ ही इस गाने में प्रसून जोशी ने फिल्म के पूरे मर्म को समेट दिया है।

0: करके सांस सांस को भट्टी, अब तू जाग मिलखा, बस तू भाग मिलखा।
1: इस फिल्म में ये मौज मस्ती भरा गाना भी प्रसून जोशी ने लिखा, जो शायद फौजी बैरकों में मौज मस्ती का सबब बन चुका है।

आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रसून जोशी के कुछ अनमोल नगमे। साल 2009 में आई फिल्म लंदन ड्रीम्स का ये गाना जो एक प्रयोग था, और ये प्रयोग बड़ा कामयाब रहा।

0: नए नगमों की उम्मीद करते रहते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार प्रसून जोशी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। प्रोग्राम गीत पिटारा सुन रहे तमाम रेडियो दोस्तों, तुहाड़े रेडियो दोस्त आरजे पवन वल्लों आदाब नमस्ते एंड सत श्री अकाल। जी दोस्तों, आज प्रोग्राम गीत पिटारा तहत तुहाड़ी नजर करांगे पुराने हिंदी फिल्मी गीत। सो करदे हां जी प्रोग्राम दा आगाज मोहम्मद रफी दे गाए इस गीत दे नाल।
1: ये जो चिलमन है

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदो।
1: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना मिति 15 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:30 बजे तुसी सुनोगे सिलसिला छावां ठंडियां ने बोर्ड दिया जिस विच मेहमान होंगे उगे चित्रकार श्री केवल कृष्ण मेजबान रहेंगे संदीप शेरगिल प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा ता फिर सुनना ना भूलना मिति 15 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:30 बजे प्रोग्राम छावां ठंडियां ने बोर्ड दिया।
0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी

का जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1,000+ विनर्स 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदो।

0: ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ।
1: दर्द दिल की उन्हें खबर क्या हो, दर्द दिल की उन्हें खबर क्या हो, जानता कौन है पराई चोट कैसी होती है। समा साथियों, 10:28 जी आकाशवाणी FM बठिंडा यानी कि 101.1 MHz से जारी है दोस्तों प्रोग्राम गीत पिटारा दा सफर। ते अज दे सफर दौरान मैं तुहाडे नाल हां, तुहाडा अपना रेडियो दोस्त, इस प्रोग्राम दा होस्ट तुहाडा अपना RJ पवन। सुनते हैं प्रोग्राम दा अगला गीत जिसनू आवाजां दित्तियां ने आशा भोसले ते किशोर कुमार ने।

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदो।
1: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना, मिति 15 सितंबर, दिन मंगलवार, दोपहर 12:30 बजे, तुसी सुनोगे सिलसिला छावा ठंडिया ने बोर्ड दिया, जिस विच मेहमान होंगे उगे चित्रकार श्री केवल कृष्ण, मेजबान रहेंगे संदीप शेरगिल, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 15 सितंबर, दिन मंगलवार, दोपहर 12:30 बजे, प्रोग्राम छावा ठंडिया ने बोर्ड दिया।

0: सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपये तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की बैठक गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू हो गई है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातो रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों

से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। ग्रामीण विकास विभाग और पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण ने पेंशन दायरे का विस्तार करने के लिए पेंशन सखियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में पेंशन संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। वे भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

देखिए, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो गाड़ी में सवार भी हो सकते हैं, क्योंकि आप अगर पीछे नहीं हटना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें भी बॉलीवुड की दुनिया की सैर करनी है, तो आप गाड़ी में सवार होकर हमारे साथ चलिए, हम आपको बॉलीवुड की दुनिया की सैर कराते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और यहाँ पर आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट तो होगा ही, एक सवाल भी होगा आप सबसे इस दौरान, जिसका जवाब आपको देना है और बॉलीवुड सरताज बनने के लिए तैयार हो जाना है। बॉलीवुड सरताज बोले तो हमसे बात करने का पूरा मौका मिलेगा, आपसे हम बात करेंगे और आपसे हम डायरेक्टली कॉल करके बात करेंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं जी सब से बात कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आप सबके मैसेजेस तो शामिल होंगे ही, तो आप सबको मैसेज भी करना है, तो उसके लिए आपको 11:30 बजे तक का वेट करना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि मेरी बातों में ही जवाब भी छुपा होगा। आपको बस हम चाहते हैं कि यही चिपक कर बैठे रहना है और सुनते रहना है आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। और हाँ, ये

सारी की सारी बातें ऐसे नहीं आएंगी, पूरे 1 घंटे धीरे धीरे आएंगी और एक एक करके आएंगी, जिनका आप आनंद उठा पाएंगे। इस मस्ती, इस धूम, इस धड़ाके में आप है ना हमारे साथ, आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक पर।

अरे भैया, बिजली तो गिरा रखी है एक मूवी ने, जिसकी आजकल बड़ी चर्चा है। और आजकल क्या, काफी लंबा टाइम हो गया, कितनी चर्चा करें इस मूवी की। हनुमान अंश की बात कर रही हूँ। अब इतना धमाल मचा चुकी है, और छोटे से बजट की बनी फिल्म 200 करोड़ी बन जाएगी, किस नहीं सोचा था।

और अब तो भैया इसके परी निकल आए हैं, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं छोटा मोटा काम करने वाली, पैन इंडिया रिलीज होने की तैयारी में है और बड़ी जल्दी रिलीज कर दी जाएगी। कहने सुनने की बात होती है कि भैया बड़े स्तर पर बड़े बड़े स्टार्स लेकर अगर आप फिल्म बनाएंगे तभी चलेगी, और कब कौन सी मूवी क्या इतिहास रचते कुछ कहा नहीं जा सकता, ये बात साबित कर दी है हनुमान अंश ने। और इतिहास रचने के बाद अब ये दक्षिण भारत के थिएटर्स में भी रिलीज हो जाएगी। और तेलुगु में की बात करें तो तेलुगु फिल्म में तो 18 सितंबर यानी अब बहुत जल्दी ये रिलीज होने वाली है। तो भाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो ये रिलीज होने वाली मूवी है, यहाँ के लोग अब कैसा रिस्पॉन्स करेंगे ये तो टाइम बताएगा। लेकिन अभी तो इस फिल्म के डायरेक्टर ने कुछ और ही बता दिया है, और क्या बताया है वो मैं बताऊंगी। और मैं तो ये भी बताऊंगी कि भाई जमाना कब बदल जाए कुछ नहीं पता, उल्टा घूम फिर के जो टाइम है ना वो आता रहता है, पुराना टाइम नए में और नए में पुराना टाइम नया होता है और नया हुए पुराने में तब्दील होता रहता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है।

इन सब से मैं यही कहूंगी, हिम्मत रखो भाई, हिम्मत रखो। जमाना कब बदल जाए कुछ पता नहीं है। फिलहाल आपको बता दूं कि अभी तो जमाना बदल गया है। हमारे जो हनुमान अंश के निर्देशक हैं, उनकी बातों की चर्चा हो रही है आजकल। पता है वो क्या कर रहे हैं? हम सबको पता है, पता है क्यों? क्योंकि हनुमान अंश के बाद अब तो विशाल चतुर्वेदी के चर्चे हैं, और जब उन्होंने नई फिल्म का ऐलान कर दिया है तो चर्चा होना भी चाहिए भाई। अब क्या लेकर आ रहे हैं, ऐसा क्या लेकर आ रहे हैं? हनुमान अंश एक सिंपल सी फिल्म बनाई और वो इतना जबरदस्त परफॉर्म कर पाई, और उसके बाद जब वो नई फिल्म की बात करेंगे तो लोग तो क्यूरियस होंगे ही ना कि अब क्या लाएंगे, अब नया क्या लाएंगे, क्या कुछ उनकी फिल्म में होने वाला है। तो चलिए हम बता देते हैं, ऑफिशियली फिल्म का ऐलान कर दिया गया है। कोई उड़ती उड़ती खबर नहीं है, राम बोला फिल्म का नाम है, और विशाल चतुर्वेदी ने कहा है कि ये फिल्म महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित होगी और उनकी कहानी हम सबको जानने समझने को मिलेगी। तो काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब हमारे महाकवि।

माने जाते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन उनकी जीवन यात्रा के बारे में शायद हम सब नहीं जानते हैं। और ये फिल्म कुछ इसी पर आधारित है, कुछ उनकी यही कहानी बताने के लिए तैयार की जाएगी। तो इस फिल्म के बारे में आगे की जो भी कहानी आएगी वो आप तक पहुंचती जाएगी। तो फिलहाल आपको क्या करना है, ऐसे ही आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े रहना है। शो चल रहा है बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ।

न्यू तो एक कैरेक्टर आने वाला है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, और ये कैरेक्टर आमिर खान स्वयं करने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसी मुझे उड़ती उड़ती खबर आई है, और ये उड़ती उड़ती खबर मैं आपको चुपके से हमेशा की तरह बता ही देती हूँ, और आज भी बता रही हूँ। तो आपको बता दूं कि आर बाल की एक निर्देशक है जिनकी चीनी कम, पा, की एंड का, बैडमैन, चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट और घूमर जैसी बड़ी बड़ी फिल्में आ चुके हैं। इन फिल्मों के लिए वो जाने जाते हैं, और वो जब कोई फिल्म बनाते हैं, और वो भी जब मिस्टर परफेक्शनिस्ट के साथ बनाएंगे, तो फिल्म में भी दम होना चाहिए। और मिस्टर परफेक्शनिस्ट ऐसे ही किसी फिल्म के लिए हाँ नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, भूमिका बन चुकी है, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों कोलैबोरेट करने जा रहे हैं एक फिल्म के लिए, और प्रोडक्शन होगा साजिद नडियाडवाला का। और ये उड़ती उड़ती खबर अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, तो हम इसको ऐसे ही मानेंगे, लेकिन हाँ ये कहा जा रहा है कि ये दोनों मिलकर एक फिल्म बनाएंगे, और उस मूवी में जो आमिर खान का कैरेक्टर होगा वो छोटा बड़ा नहीं होगा। पहली बार आमिर खान दिखेंगे सुपर हीरो के अवतार में, और जब वैसे तो हमारी नजर में वो सुपर हीरो हैं, लेकिन हाँ इस तरह के रोल में उनको हम पहली बार देखेंगे, और हम होप करते हैं कि ऑल इज वेल, और ये मूवी बनकर तैयार हो, आमिर खान इस मूवी में हो, और हम उनको इस नए अवतार में देख सकें। क्या कहते हैं? सुनते रहिए बीटी विद बीटी, ऐसे ही धमाकेदार खबरें, नई नई खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। और आपको बता दूं, बॉलीवुड सरताज के लिए सवाल ज्यादा दूर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आंसर दीजिएगा, और बॉलीवुड सरताज बन जाएगा। ऑल द बेस्ट, ऑल इज वेल।

कहने का तात्पर्य ये कि जब भी आपको ऑल इज वेल बोलना है तो आपको ऐसे ही नहीं बोल देना है, आपको होंठ घुमाना है, सीटी बजाना है, उसके बाद बोलना है। होंठ घुमा, सीटी बजा, उसके बाद बोलो ऑल इज वेल। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौट कर आती हूँ, फिर आपसे सवाल पूछती हूँ और देखती हूँ आपको आंसर पता है कि नहीं। सवाल कौन सा होगा, जो आपने गेस किया है ना वो वाला तो बिल्कुल ही नहीं है।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
3: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
3: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में। न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
3: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
3: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।

ये आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक सुन रहे हैं आप बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ। और अब वही बात जिसका आप सबको इंतजार है, सवाल पूछ लिया जाए, पूछ लिया जाए, पूछ लिया जाए। और सवाल क्या है आज का बॉलीवुड सहताज बनने का? तो सवाल कुछ इस तरह से है, फिल्म चीनी कम के निर्देशक का नाम क्या है? फिल्म चीनी कम के डायरेक्टर नाइ निर्देशक का नाम क्या है? ये आज का सवाल, इसका जवाब आपको व्हाट्सएप मैसेज करके देना है हमेशा की तरह, और नंबर भी हमेशा की तरह सेम ही है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो बता देती हूँ, 9868107070 आपको व्हाट्सएप मैसेज करके बताना है कि फिल्म चीनी कम के निर्देशक का नाम क्या है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपका नाम और आपके शहर का नाम सबसे पहले आना है, उसके बाद आंसर लिखना है, ताकि आपका सवाल सही या गलत जो भी हो मैसेज शामिल हो जाए। 9868107070 9868107070। सुन रहे हैं आप बीटी विद बीटी बॉलीवुड रील्स बबीता त्रिपाठी के साथ, तो एंजॉय।

मैं तो ये कह रही थी कि तबाही मचने वाली है सिनेमा घरों में, पता है क्यों? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी कर रहे हैं राम गोपाल वर्मा जी। आने वाली जो मूवी है ना उनकी, वो कुछ इस तरह की है कि बस तबाही ही है। कहने का मतलब वो जो मैं कह रही हूं उसका तात्पर्य ये कि उन्होंने कुछ ऐसा ही दावा किया है कि धुरंधर मूवी से भी बड़ी मूवी वो लेकर आ रहे हैं। कुछ छोटी मोटी मूवी नहीं, धुरंधर में तो सिर्फ दाऊद इब्राहिम को दिखाया गया था, इस बार तो छोटा राजन भी शामिल है। ये सब उन्होंने जानकारी दी है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने कहा आने वाली जो उनकी मूवी है, जिसका अभी नाम फाइनल नहीं है, वो कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है, धुरंधर से भी बड़ी मूवी होगी। और ये मूवी अंडरवर्ल्ड पर आधारित होगी, जिसमें ना सिर्फ दाऊद रहेंगे बल्कि छोटा राजन भी रहेंगे। और कहानी में मेन बात जो दिखाई जाएगी वो ये कि किस तरह से दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन अलग हुए थे, और उसमें सौत्या नाम के एक शख्स की भूमिका थी। और साथ में ये भी कहा, सौत्या से याद आया, कि सत्या से भी ज्यादा असलियत के करीब होगी ये कहानी। और साथ में और भी तमाम जो घटनाएं हुई थी उसके आसपास, वो सब इस मूवी में दिखाई जाएंगी। और काफी खतरनाक वैसे सुनने में लग रहा है, देखते हैं मूवी में क्या होगा और कितनी बड़ी होगी, समय बताएगा। यस, सब कुछ समय पर छोड़ दो बालक, फिलहाल एंजॉय करते हैं। बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स, आकाशवाणी रेनबो पर, बबीता।

अति सुंदर गीत फिल्म का नाम बागी फोर, बागी फोर, नॉट फोर, इट्स फोर। तो अब आगे की कहानी ये कि गाने से मुझे कुछ बात याद आ गई। रामायण का पहला गाना रिलीज हो गया है, देखा क्या? देखने वाली बात है भाई, सुनने वाली बात तो उससे ज्यादा है। पता है क्यों? क्योंकि गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं, देखने के लिए भी होते हैं आजकल। और आपको जब ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो क्यों नहीं देख रहे हैं? रिलीज हो गया है और इस गाने को आप देख सकते हैं। रामायण का गाना है भाई, छोटी मोटी बात ऐसे हो ही नहीं सकती। AR रहमान ने म्यूजिक को कंपोज किया है और श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने आवाज दी है। अरिजीत सिंह, याद आया कि उन्होंने अभी गाना छोड़ दिया है, लेकिन ये गाना पहले ही रिलीज हो गया था। मतलब गाना नहीं छोड़ा है, लेकिन हाँ फिल्मों में गाना छोड़ दिया है, उन्होंने संन्यास ले लिया है। और एक और खास बात, इस गाने की लिरिक्स जो है ना, वो कुमार विश्वास ने लिखे हैं। तो मतलब हर तरह से ये गाना खास तौर से खास बनाया गया है। और अब रही बात गाने की, तो जय जय राम टाइटल है और इसमें जो लिरिक्स हैं वो आपको बता ही दिया और सिंगर्स भी बता दिए। नए नहीं है, बहुत जाने माने और पहचाने और जबरदस्त इसमें नाम जुड़े हैं। और रही बात रामायण की, तो हम सब जानते हैं रामायण में क्या क्या हुआ था, लेकिन सब कुछ इस गाने में झलक के रूप में हमें देखने को भी मिल रहा है। जैसे सियाराम के विवाह की झलक देखने को मिल रहा है, और साथ में स्वयंवर की बात भी देखने को मिल रही है, और साथ में किस तरह से उनका अयोध्या आने पर भव्य स्वागत हुआ था ये भी दिख रहा है गाने में, और वनवास के दिनों की भी कहानी से इस गाने को अंत किया गया है। इस गाने का तो जबरदस्त गाना है, आप चाहें तो इसका आनंद ले सकते हैं। ये गाना रिलीज कर दिया गया है और फिलहाल हमारा अगला गाना भी रिलीज हो चुका है, यानी चल चुका है। और आपको बता दूं कि सवाल का जवाब आप सबने दे दिया है, अब आप सबके नामों को लेने की बारी थोड़ी देर में।

0: आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी और बीटी विद बीटी में फिलहाल आप सबके सवालों के जवाब जो आ गए हैं उनके नाम तो एटलीस्ट शामिल कर ही लेती हूँ। और रही बात बॉलीवुड सहताज की, तो बॉलीवुड सहताज के लिए आप सब कमर कस लीजिए, किसी का भी कॉल अचानक आ सकता है और आप बॉलीवुड सहताज के लिए चुने जा सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक सवाल का जवाब ही नहीं दिया है या सवाल सुना ही नहीं है तो थोड़ी देर का मौका आपको दे देती हूँ। एक आध एड जब तक एड ब्रेक लेती हूँ, आप इतनी देर में अगर आंसर कर पाए तो कर ही दीजिए। पूछा मैंने ये था कि फिल्म चीनी कम के निर्देशक का नाम क्या है, तो आप चाहें तो फटाफट अब भी बता सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके 9868107070 पर, 9868107070। और फिलहाल मैं इस ब्रेक के बाद लौट कर आती हूँ और आप सबके नाम शामिल करती हूँ। सुनते रहिए बीटी विद बीटी बॉलीवुड फेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

यह आकाशवाणी रेनबो और आप सबके नाम है ये सलीम मलिक मेरठ से, तरुण कोहली सूरज कुंड मेरठ से एक बार फिर से। और रही बात अगले नाम की, तो इन्होंने कहाँ से लिखा है, कान्हा ने मेरठ से ही लिखा है, और सभी मेरठ वालों को बहुत सारा धन्यवाद। और रही बात अगले मैसेज की, तो सोनिया विहार दिल्ली से कंचन लिख रही हैं और उमेश कुमार खयाला से लिख रहे हैं, और इस बार भी उमेश कुमार ने सबसे पहले आंसर ही कर दिया है अपना नाम बाद में लिखने का। एक माइनस पॉइंट हो सकता है कि आपका नाम शामिल ना हो, क्योंकि कंप्यूटर हमारा ना बड़ा स्मार्ट है, आपका नाम सबसे पहले लिखा रहेगा तो दिखा देगा, नहीं तो फिर मैं ढूंढूंगी नहीं, एक्चुअली जल्दी होती है हमें। हरीश गौर मेरठ से ही लिख रहे हैं और अनिल शाह उत्तम नगर न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं। उसके बाद फिर मुझे मैसेज दिख रहा है, उत्तम नगर के बाद कहाँ गए, ज्ञान प्रकाश का मैसेज दिख रहा है और ये कहीं से तो लिख रहे हैं। अनूप साहू भी कहीं से लिख रहे हैं और सुखलाल बाला भी लिख रहे हैं वेस्ट बंगाल से, इनका नाम दिख रहा है। और उसके बाद मैसेज दिख रहा है मिसेज धर्म भाटिया का, रोहतक से लिख रही हैं। और अगला मैसेज किसका है, अगला मैसेज है नवाब अहमद भारती।

का, और ये बलीमारान से लिख रहे हैं। अगला मैसेज राजेश राकेश कुमार का है। उसके बाद राकेश कुमार जायसवाल मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं, शिव विहार से फहीम खान लिख रहे हैं, फैज शिव विहार से लिख रहे हैं, और प्रकाश गोगिया लिख रहे हैं, ये कहाँ से लिख रहे हैं नाम नहीं दिख रहा है जगह का, और महेंद्र सिंह औरंगाबाद से, मोहम्मद इम्तियाज, सलमा बेगम जवाहर कैंप न्यू दिल्ली से, मोहम्मद फुरकान लिख रहे हैं मेरठ से, और सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, ये भी कहीं दिल्ली से ही लिखते हैं शायद, और क्योंकि नाम जगह का नहीं दिख रहा है। जुल्फिकार बिहार से लिख रहे हैं, और अगला मैसेज किसका है, राजकुमार संतानी का, और ये मैसेज आता है महाराष्ट्र से, बसंत उमर मेरठ से, तौसीफ अहमद भी लिख रहे हैं श्रीनगर से लिख रहे हैं ये, और उसके बाद पवन का फरुखाबाद से। इतने सारे लोगों ने नाम अपना पहले लिखा था, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके नाम शामिल हो चुके हैं, और अगला प्रॉमिस बॉलीवुड सरताज बनाने का वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने टाइमली फोन पर बात करने के लिए फोन उठा लिया और आपको कॉल लग गया, आप ही को कॉल मैंने मिला दिया, मतलब बहुत सारे चांसेस हैं, तो आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज और हमसे बात करने का मिल सकता है मौका बस थोड़ी देर में। लेकर आती हूँ बॉलीवुड सरताज।

मीनी माइनी मो, बेबी कम बेबी गो, बेबी मैं तेरी ब्यूटी का फैन हूँ, तू गोरी गोरी छोरी छोरा मैं भी टैन हूँ, ये घर वाले की ना कर पर बात हूँ, पूरा चंडीगढ़ तेरे नाम करा दूँ, येलो ड्रेस तेरी मेरी येलो लैम्बोर्गिनी, हर विश करूं पूरी तेरी मैं हूं तेरा जिनी, ऐसे करके इशारे क्यों तू दिल तड़पाए, कभी आए कभी जाए मंजे काए मंजे काए। ए मेंडोलिन चल चालू करना।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: और आकाशवाणी रेनबो पर ये समय किस बात का है, ये समय ये है कि हम आपको बॉलीवुड सरताज से मिलवाएं और हम आपसे लें विदा, लेकिन ऐसे नहीं, लौट कर जरूर आएंगे। उसके बारे में हम अभी फिलहाल नहीं बताएंगे, अभी आपको बताएंगे कि बॉलीवुड सरताज आज का कौन है, उनसे हम डायरेक्टली मिलवा ही देते हैं, उनकी आवाज अगली होगी, तो सुनते हैं। हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैम, हरीश और बोल रहा हूँ मेरठ से। जी
0: बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर हरीश जी।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत।
0: तो बॉलीवुड सरताज कितनी बार बन चुके हैं आप, कुछ बताएंगे?
1: मैडम जी हाँ, कई बार बन चुके, 2-3 बार तो आपने बना दिया है, और भी
0: हाँ
1: मतलब टोटल मिला के 7-8 बार हो चुका है जब से मैंने सुनना किया, शुरू किया कई साल से।
0: और पता है ऐसा क्यों होता है?
1: जी
0: क्योंकि सबको दिखता है कि पहली जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाने वाले लोगों में कुछ नाम है, उनमें हरीश गौड़ का नाम रहता है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: तो आपका नाम आज शामिल किया गया, वैसे काफी लंबे टाइम बाद मुझे लगता है आपको
1: जी
0: शामिल
1: हाँ,
0: किया
1: कई
0: गया है।
1: हाँ कई महीने बाद आज शामिल किया है।
0: तो चलिए सबसे पहले आंसर ले लेते हैं। मैंने सवाल पूछा था, क्या पूछा था मैंने सवाल?
1: चीनी कम के डायरेक्टर कौन है? आर वाल की। थैंक
0: आर बाल की, बिल्कुल सही जवाब, और कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से आप बॉलीवुड
1: यू,
0: सरताज
1: थैंक यू
0: बनने
1: वेरी
0: के
1: मच
0: लिए।
1: मैडम।
0: तो हरीश जी आपको बहुत बहुत बहुत मुबारक हो।
1: थैंक यू वेरी मच
0: तो कैसा लग रहा है आपको?
1: मैम, यहाँ आना तो हमेशा अच्छा लगता है। FM पे अगर बात डायरेक्ट हो रही है तो उससे अच्छी और क्या बात होगी, दिन बन
0: अच्छा,
1: जाता है,
0: या फिर अच्छा मतलब आपको अच्छा लगने की आदत पड़ चुकी है।
1: ये कह सकते हैं। FM ने आदत डाल दी है, FM रेनबो ने।
0: और हमें आपकी आदत डाल दी है FM ने, क्योंकि
1: जी
0: FM के थ्रू आपसे आपका नाम सुनने को हमेशा मिल जाता है।
1: जी
0: तो थैंक यू सो मच, इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो से। वैसे थोड़ा बहुत अपने बारे में बता सकते हैं, थोड़ा बहुत समय है, बताइए क्या
1: अच्छा,
0: करते हैं आप?
1: मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मार्केटिंग में हूँ
0: अच्छा,
1: और मेरठ से हूँ।
0: तो कैसे सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो?
1: मोस्टली चलते हुए, गाड़ी में चलते हुए सुनता है।
0: अच्छा, चलते हुए सुनते हैं। उन लोगों से मतलब हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो अक्सर गाड़ियों में ट्रेवल कर रहे होते हैं, ट्रेवल वाला काम है,
1: हाँ,
0: वो
1: वही
0: जरूर
1: जी
0: सुनते होंगे। चलिए
1: मैम।
0: थैंक यू सो मच, ऐसे ही जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।
0: ओके हरीश
1: ओके
0: जी,
1: बाय
0: बाय।
1: बाय।
0: तो ये थे हरीश गौड़ आज के बॉलीवुड सरताज। फिलहाल मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को भी दीजिए इजाजत, लेकिन लौट कर आऊंगी 1 बजे। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आस्क चॉकलेटियर, और क्या पूछना है मुझे खुद नहीं पता, वही बताएंगे। हमारी जो गेस्ट हैं स्मृति भाटिया, वो हैं चॉकलेटियर, और वो बताएंगी कि क्या पूछना है और क्या जवाब है, वो दोनों ही बातें बताने वाली हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है ना, तो आप जरूर पूछ लीजिए। वो खुद बोल रही हैं कि पूछिए मुझसे, मैं सारी बातों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो भाई इस शो को आप मिस मत कीजिएगा, और आज चॉकलेट्स पर बात करके हम देखते हैं कि क्या चॉकलेट खाना अच्छी बात होती है या गंदी बात। और इस शो से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को दीजिए इजाजत, बाय, लौट कर आती हूं। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। सरकार ने कहा है कि बैंक ₹2000 तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बंबई उच्च न्यायालय

के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक की शुरुआती बढ़त खत्म हो गई और दोपहर के सत्र में वो गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना मिति 16 सितंबर दिन बुधवार नूं शाम 5:30 बजे।

10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।

जी श्रोतियो, हर मंगलवार प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे तहत तुसी अजकल सरवन कर रहे हो श्रीमद भागवत गीता। अते इस मंगलवार मिति 15 सितंबर शाम 5:30 बजे तुसी सरवन करोगे श्रीमद भागवत गीता दे 5वें अध्याय दी सरल अते सौखी व्याख्या।

10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होवेगा आज ही खरीदो टीएनसी अप्लाई।

जी श्रोतियो, हर मंगलवार प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे तहत तुसी अजकल सर्वन कर रहे हो श्रीमद भागवत गीता। अते इस मंगलवार मिति 15 सितंबर शाम 5:30 बजे तुसी सर्वन करोगे श्रीमद भागवत गीता दे 5वें अध्याय दी सरल अते सौखी व्याख्या।

जानू कर्म त्याग अते आत्मिक शांति दा डूंगा संदेश बिल्कुल सौखी पंजाबी विच। वाचक ममता अरोड़ा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 15 सितंबर दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।

अते 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी एक लकी ड्रॉ कूपन। 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होवेगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।

0: वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना, मिति 16 सितंबर दिन बुधवार नूं शाम 5:30 बजे।
1: दस साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयली प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
2: छाती अते साह दीआं तकलीफां तों परेशान हो? बड़ियाल हस्पताल बठिंडा लेके आया है छाती दे रोगां दा सफल इलाज। मिलो डॉक्टर आंचल जैन, MBBS, MD, पल्मोनरी मेडिसिन, एक्स एम्स दिल्ली सीनियर रजिस्ट्रार नूं। दमा, COPD, खंघ, साह चढ़ना अते एलर्जी दा सही अते आधुनिक इलाज। बड़ियाल हस्पताल, नेड़े DAV कॉलेज, BB वाला रोड, बठिंडा। कॉन्टैक्ट 7527011711। बड़ियाल हस्पताल, तुहाडी सेहत दा सच्चा साथी।
3: तुसी हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम घर परिवार, सिलसिला छावां ठंडियां ने बोर्ड दियां। मैनू काजल नू दिओ इजाजत। नमस्कार।
4: प्रोग्राम घर परिवार।
3: FM बैंड 101.1 MHz ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा। स्टूडियो दी घड़ी दे मुताबिक 1:09 हो रहे ने। ठीक 1:10 ते तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं जगजीवन सिंह तों प्रादेशिक खबरां सुणो। केंद्र सरकार ने कहा है कि बैंक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई या रूपे द्वारा संचालित डेबिट कार्डा राही कीते गए 2000 रुपए तक के लैण देण जां भुगतानां ते चार्ज नहीं लगा सकते। एक सरकारी गजट नोटिफिकेशन अनुसार कोई भी बैंक जां भुगतान प्रणाली मुहैया करन नाल इन्हां तरीकियां राही लैण देण करन वाले व्यक्तियां ते सीधे जां सीधे चार्ज नहीं लगा सकता। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लैण देण ते चार्जां संबंधी नियमां नूं स्पष्ट करन लई भुगतान ते सैटलमेंट सिस्टम एक्ट तहत इन्हां बदलावां नूं नोटिफाई कीता है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन अज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1969 ऑल इंडिया रेडियो के अधीन टैलीविजन सेवा की अजमायश करने के तौर पर की गई थी। पिछले कुछ सालों दौरान लोगों तक जानकारी पहुंचाण, सभ्याचार को मजबूत करन अते देश की एकता लिए यह अहम मंच बन गया है। दूरदर्शन अपन कई बेहतरीन सेवावान जिमें सैटेलाइट और डायरैक्ट टू होम सेवा के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला जरिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बीते दिन गैंगस्टरां, नशा तस्करां अते सूबे की शांति नूं भंग करन की कोशिश करन वाले अंसरां नूं सख्त सुनेहा दिता है। उन्होंने कहा है कि पंजाब विच अमन कानून पूरी तरह कायम है अते अपराधियों लई कोई सुरक्षित लुकणगा नहीं है। मोलडोवा गणराज तो भगौड़े अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दालम की हवालगी हासिल करने लई एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF दे SP बिक्रमजीत सिंह बराड़ की अगवाई वाली पंजाब पुलिस टीम नूं बधाई दिंदिया मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सरकार पंजाब की शांति अते सुरक्षा लई पूरी तरह वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि सरकार वालों 1234 गैंगस्टर मॉड्यूलों का पर्दाफाश किया गया है अते विदेशों तों 10 भगौड़िया नूं रिपोर्ट किया गया है, जबकि नशा तस्करों खिलाफ 60582 FIR दर्ज की गई ने 366 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैंगस्टर लई हुण कोई सुरक्षित थां नहीं बची। उन्होंने कहा है कि अमृत दालम की हवालगी संगठित अपराध विरुद्ध पंजाब की निरंतर मुहिम में एक वड्डी प्राप्ति है अते सूबा सरकार की गैंगस्टर ते वार मुहिम की सफलता का प्रतख प्रमाण है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सूबा सरकार ने गैंगस्टर फरौती मंगण वालिया, नशा तस्करों अते संगठित अपराधिक नेटवर्कों विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पंजाब पुलिस के काउंटर इंटैलीजेंस विंग ने 16 मार्च 2022 तो 11 सितंबर 2026 तक के 4 सालों तो वध समय दौरान की गई कार्रवाई दौरान 92 दहशतगर्दी मॉड्यूलों का पर्दाफाश करके 686 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। इस दे नाल ही इस विंग ने इस समय दौरान 53 दहशतगर्दी मॉड्यूलों समय तो पहला खत्म करके वड्डे दहशतगर्द हमलों को टालिया है। पंजाब पुलिस डायरैक्टर जनरल गौरव यादव ने अज चंडीगढ़ च एक पैनकट प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दसिया है कि AK-47 अते होर घातक राइफलां, रिवालवर अते IED समेत वड्डी गिणती विच हथियार बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 28 किलोग्राम तो बाद RDX अते होर विस्फोटकों 131 हैंड ग्रेनेड अते 6 RPG लॉन्चर भी जब्त किए गए हैं। पुलिस मुखी ने दसिया कि सितंबर 2024 तो लैके हुण तक पंजाब पुलिस वख-वख थाणियां समेत 43 दहशतगर्द हमलों दीआं घटनावां सामने आईआं ने। उन्होंने दसिया कि हुण तक इन्हां सारे मामलों नूं रिकॉर्ड समय विच हल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि नशिया विरोधी मुहिम युद्ध नशा विरुद्ध तहत लगभग 80,000 नशा तस्करों नूं गिरफ्तार किया गया है अते 3800 किलोग्राम तो वध हैरोइन समेत भारी मात्रा विच नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरनवीर सिंह सौंध ने अते डॉक्टर बलजीत कौर वालों बीते दिन विधानसभा हल्का मलोट विखे श्री गुरु रविदास नगर च 15 करोड़ रुपए की लागत नाल तैयार होने वाले मलोट क्राफ्ट कोरीडोर प्रोजेक्ट का नींह पत्थर रखे। मंत्री सौंध ने जानकारी दिंदा दस्सिया कि मलोट क्राफ्ट कोरीडोर प्रोजेक्ट अधीन तैयार होने वाली हैरीटेज स्ट्रीट को मुकम्मल होने में 6 महीनों का समा लगेगा। इस विच श्री गुरु रविदास नगर दीआं 4 गलियां कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नगर में लोग पंजाबी जुत्तियां मनाउण का काम वड्डे पद्धर ते करदे ने अते बहुत वड्डे कारीगर इस काम में अपना हुनर दिखा रहे हैं। इस हैरीटेज स्ट्रीट के बनने नाल उन्होंने होर सुंदरता अते स्वच्छ

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना मिति 16 सितंबर दिन बुधवार नूं शाम 5:30 बजे।

जिस जो त्यो हर मंगलवार प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे तहत तुसी आजकल सर्वन कर रहे हो श्रीमद भागवत गीता अते इस मंगलवार मिति 15 सितंबर शाम 5:30 बजे तुसी सर्वन करोगे श्रीमद भागवत गीता दे 5वें अध्याय दी सरल अते सौखी व्याख्या।

0: और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: श्री सिंह ने डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी है। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
2: इंडिया टुडे, भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
3: आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहले चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है।
5: अंडर द EPR मैकेनिज्म

0: ईपीआर व्यवस्था के अंतर्गत ईपीआर प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न ईपीआर ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
1: Under the various EPR framework.
2: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
3: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि ईपीआर विनिमयों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र, भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थिति, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में एआई के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब एक महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
4: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं। विदेश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
5: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूँ।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है।
2: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुच्चेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
4: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
3: आकाशवाणी समाचार के लिए से
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्म योगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:30 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੀਲੀ ਦੁਪਹਿਰ।

जिस जोतियो हर मंगलवार प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे तहत तुसी आजकल सर्वन कर रहे हो श्रीमद भागवत गीता अते इस मंगलवार मिति 15 सितंबर शाम 5:30 बजे तुसी सर्वन करोगे श्रीमद

जानो कर्म त्याग अते आत्मिक शांति दा डूंगा संदेश बिल्कुल सौखी पंजाबी विच। वाचक ममता अरोड़ा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 15 सितंबर दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।

10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होवेगा आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।

0: वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना, मिति 16 सितंबर दिन बुधवार नु शाम 5:30 बजे।
1: दस साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका, जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी अते 1,000+ विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होवेगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
2: आकाशवाणी FM बठिंडा, FM बैंड 101.1 MHz ते अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम सुरीली दोपहर।
3: जी स्रोतियो, अगले खता नूं पढ़न तो पहला एक जरूरी सूचना। हुण आकाशवाणी बठिंडा तुसी प्रसार भारती दे OTT प्लेटफॉर्म वेव, जी हाँ वेव ते भी सुन सकते हो। उत्थे ए प्रसारण तुसी मुफ्त विच ही सुनोगे। ते आओ हुण रुख करदे हां साडे अगले श्रोतावां दे खतां वल। साडे नाल जुड़े ने पिंड गंगा तहसील नथाणा बठिंडा तो

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली, बस थोड़ी ही देर में।

0: की सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: आरती श्रीवास्तव का
1: प्यार भरा
2: नमस्कार।
1: कहिए आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चल रहा है गणेश उत्सव।
1: बिल्कुल, और हम खा रहे हैं मोदक। भाई घर घर में गणपति बप्पा के आगमन की जो तैयारी हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, और लोग अपने घर पर बुला रहे हैं, बाकायदा भोजन करवा रहे हैं और गणपति बप्पा को याद भी कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, और जब अलग अलग घरों में जाओ ना, जो वो शोभा देखने को मिलती है ना, इतनी सुंदर झांकी सी सजा के रखते हैं गणपति बप्पा को, इतना सुंदर सजाया हुआ है, उनके चारों तरफ कहीं फूल हैं तो कहीं अलग अलग तरीके की उन्होंने सजावट करके रखी हुई है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम लोग हमें बुला रहे हैं और हम उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि इतने सुंदर तरीके से बप्पा को उन्होंने सजाया है, आसपास गुलाबी फूल, कहीं लाल फूल, कहीं पीले फूलों से सजावट की गई है, और आसपास वाद्य यंत्र भी रखे गए हैं। कई जगह मैंने देखा सितार रखा है, तानपुरा रखा है, इस तरह से भी जो है उस मंदिर को लोगों ने अपने घर में सजाया है।
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता है देख के, एक एक सकारात्मक अपने अंदर आते हैं ना, एक ऐसी भावना आती
1: बिल्कुल,
2: है
1: बिल्कुल।
2: कि चलो ये जो त्योहारों के दिन होते हैं ना, जब हम निकलते हैं तो वहां भी जो सड़कों पे भी जाइए तो वहां पर भी इतना अच्छा सब जगह जगह देखने को मिलता है कि सजावट है, दुकानें भी सजी हुई हैं, हर जगह बहुत अच्छा लगता है।
1: लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है, और कहते भी हैं कि जो गणेश जी हैं सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक के प्रतीक भी हैं, तो लोगों में जो है उनका बड़ा ही एक महत्व है। हम कितना जैसे ही हमारा कोई काम नहीं बनता हम तुरंत गणपति बप्पा मोरिया को याद करने लगते हैं और कहते हैं कि हे गणेश देवता, ये जो भी विघ्न बाधाएं आ गई हैं उन्हें आप दूर कर दें और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चला दें, है ना?
2: बिल्कुल,
1: तो हम यही कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए भी कि भाई जो ये खास दिन हम मना रहे हैं, हमारे जो बप्पा हैं हमारे जीवन के सभी विघ्न हर लें और खुशियों के रास्ते हमारे सभी श्रोताओं के, सभी सखियों और सखाओं के जीवन की खोल दें, ताकि हम अपनी जो राह है जहाँ जगह जगह पर हर्डल्स हमें दिखाई देती हैं वो न दिखाई दें और हम अपना रास्ता अच्छे तरीके से तय कर लें।
2: बिल्कुल, मीठा खाते खाते है ना।
1: हाँ बिल्कुल, मोदक के साथ साथ और एक सुरीला गीत भी सुन लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे श्रोता तो जानना चाहेंगे ना, आज आप क्या विषय लेकर आई,
2: कौन से विषय पे हमें बातें करनी है, ये भी जानना जरूरी है। तो आज हम लेके आए हैं जो विषय है वो है खत्म होती जा रही सहनशीलता।
1: ओहो,
2: किस तरीके से हम अपनी सहनशीलता को खत्म करते जा रहे हैं और हम उतावले हो रहे हैं हर चीज के लिए, तो इसके बारे में भी
1: हम तुरंत किसी चीज को पाना चाहते हैं ना। पहले सहन शक्ति होती थी हमारे अंदर, और अभी ये हो गया है कि हमें किसी ने कुछ कह दिया है तो हम तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। पहले हम पहले सोचते थे, गुनते थे, मनन करते थे कि हम इसका जवाब देना भी है कि नहीं देना है, है ना, शांत रहते थे, लेकिन अभी तुरंत जवाब देना सीख गए हैं
2: तो, और हम सिर्फ अभी मुंह से जवाब नहीं देते, हाथ पैर भी चलने लगते हैं।
1: हाँ, ये तो और भी गलत तरीका है। तो ये जो आपने कहा कि सहन शक्ति खत्म हो गई, इस पर वाकई हम चर्चा करेंगे और अपने श्रोताओं से भी चाहेंगे कि वो बताएं कि उनके जीवन में इतनी सहन शक्ति बची है।
2: बिल्कुल, वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत सुमिता घोष की, जो कि रंग सूत्र की संस्थापक हैं।
1: क्या बात है।
2: और आज हम मुहावरों की दुनिया में लेकर आए हैं कान भरना।
1: बहुत से लोगों का शौक होता है ये, आपको पता है ना कि लोग एक दूसरे के कान भरते रहते हैं। घरों में देख लीजिए, पड़ोस में देख लीजिए, कार्यालयों में देख लीजिए,
2: हर जगह

0: हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए किसी दूसरे का कान भर रहे हैं, और
1: बिल्कुल
0: सामने वाले का
1: जी
0: कान भी कच्चा होता है आरती
1: बिल्कुल, इसी के साथ में जुड़ा हुआ ये चीज कि आपके कोई कान भर रहा है तो आप कान के कच्चे हैं, इसका मतलब आप जो बातों में आ रहे हैं
0: और बातों में आ जाते हैं और उसे सच्चा मान लेते हैं।
1: बिल्कुल। और आज हम बात करने जा रहे हैं हल्की फुल्की बातों के अंतर्गत खाने की अतरंगी आदतों की।
0: जैसे
1: जैसे कि किसी किसी को शौक होता है ना कि जलेबी को सॉस में डुबो के खाने का
0: ओहो, ये तो
1: बिल्कुल
0: बड़ा
1: अजीब अजीब, सच में मैंने देखा है, शौक होते हैं लोगों के। और इस तरीके की बातों पे हम बात करें, कोई हमारे जो श्रोता हैं, जो सखियां हैं, जो सखा हैं, क्या उनके अंदर भी इस तरीके की कोई आदत है कि उनको मीठे के साथ नमकीन को मिक्स करके खाना अच्छा लगता है, या कुछ इस तरीके से जैसे मैंने बताया जलेबी को सॉस में डुबा के खाना अच्छा लगता है।
0: अच्छा।
1: तो इस तरीके की अगर आदतें हैं आपके अंदर या आपके किसी जानने वाले के अंदर, तो आप हमारे साथ उसको साझा करिए।
0: हाँ बिल्कुल, एक अलग किस्म की ये आदतें हैं जो हर एक में नहीं होती और हर एक इस तरह का स्वाद लेना पसंद भी नहीं करता है।
1: जी
0: तो आप बताइएगा कि आपके घर में आप कोई व्यंजन बनाते हैं या किसी के घर जाते हैं या आपके घर में बच्चे ऐसा करते हो कि
1: हाँ,
0: किसी चीज के साथ कोई ऐसी चीज मिला
1: जो
0: के
1: बहुत ही
0: खाते हैं,
1: अजीब हो
0: अजीब होती, कॉम्बिनेशन ही नहीं उस चीज का, है ना। तो इस तरह की बातें हम चाहेंगे आज बहुत अच्छी तरीके से हम श्रोता के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और अभी गीत सुन लें।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, ये गीत तो बहुत ही सुंदर था और बहुत कम सुनने में आया है ये गीत, है
1: बहुत
0: ना?
1: प्यारा लगता है ना।
0: हाँ। अच्छा एक बात बताओ आरती, अगर तुम्हारे घर पर किसी जरूरी फैसले पर सबकी राय ली जाए तो क्या मानती हो तुम, वो लोकतंत्र है?
1: बिल्कुल लोकतंत्र माना जाएगा उस चीज
0: माना
1: को।
0: जाएगा?
1: मेरी नजर में तो माना जाएगा।
0: बिल्कुल, मतलब बात छोटी सी है लेकिन लोकतंत्र की जो भावना है हम समझते हैं यहीं से शुरू हो जाती है
1: जी
0: ना?
1: जी
0: सबकी बात सुनी जाए और फैसले में लोगों की भागीदारी भी हो, और यही वजह है कि हर साल हम 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि लोकतंत्र केवल चुनाव और मतदान तक सीमित नहीं होता, ये समानता, स्वतंत्रता, भागीदारी, संवाद और जिम्मेदारी की भावना से भी जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल। इसको एक उदाहरण देके समझा सकते हैं
0: जैसे
1: लोकतंत्र को। बहुत छोटा सा उदाहरण है, आप शायद हंस भी पड़े इस पर, कि सोचिए कक्षा में पिकनिक के लिए दो जगहों के नाम सामने आए। एक बच्चा बोला मुझे पहली जगह पसंद है, और दूसरा बोला मुझे तो दूसरी जगह पसंद है।
0: ठीक है।
1: अगर शिक्षक जो है जो पढ़ा रहा है वो बिना किसी की बात सुने खुद ही फैसला दे दे कि तो ये भागीदारी वाली प्रक्रिया तो नहीं कही जाएगी
0: बिल्कुल
1: कि नहीं ना हमने उनकी सुनी ना उनकी सुनी, हमने तो अपना फैसला लागू
0: दे
1: कर दिया।
0: दिया। हाँ।
1: तो लेकिन अगर सबकी राय सुनी जाए और विकल्पों पर चर्चा हो और फिर उचित तरीके से निर्णय लिया जाए, तो ये लोकतांत्रिक सोच का एक छोटा सा उदाहरण है। यानी सरल शब्दों में कहें तो मेरी आवाज महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
0: ये सबसे बड़ी बात है ना,
1: जी
0: कि
1: बिल्कुल।
0: हमारे विचार तो हमने थोप दिए किसी पर लेकिन सामने वाले के विचारों को देखा भी नहीं, लेकिन अगर आपने दोनों विचारों का सम्मान किया यही लोकतंत्र
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: और मान लीजिए घर में आज तय होना है कि रात के खाने में क्या बनेगा, है ना? होता है ना भाई, आज क्या
1: बिल्कुल
0: बनाना
1: बिल्कुल
0: है, तो
1: जी
0: पापा कहते हैं भाई आज तो पूरी सब्जी खाने का मन है,
1: हाँ
0: और बच्चे कहते हैं नहीं, हमें तो पिज्जा खाना है, हमें तो
1: हाँ
0: बर्गर खाना है ना? लेकिन मम्मी कहती है कि आज तो खिचड़ी
1: हो गया
0: बनेगी।
1: फैसला।
0: ऐसे में क्या होता है कि वो लोकतंत्र खत्म हो जाता है
1: बिल्कुल
0: और असंतोष घर
1: बिल्कुल,
0: में
1: प्रजा में
0: व्याप्त हो
1: असंतोष।
0: जाता
1: जी
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो
1: तो जी, और लोकतंत्र हमें सिखाता है कि असहमत होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम दूसरे की बात सुनना ही बंद कर दें। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें नागरिक केवल दर्शक नहीं होते बल्कि व्यवस्था में भागीदार होते हैं। यानी कि मम्मी को सबकी बात सुननी चाहिए। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, सवाल पूछते हैं, अपनी राय रखते हैं और समाज के बेहतर भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और
0: और साथ ही हमेशा ये भी याद रखना चाहिए आरती,
1: जी
0: हमें ये अधिकारों के साथ साथ
1: जी
0: जिम्मेदारियां भी आती हैं जिन्हें निभाते हुए लोकतंत्र का सम्मान किया जा सकता है। और अब मैं भी यहाँ सम्मान करूंगी लोकतंत्र का, आपसे पूछती हूँ कि एक अंतराल ले
1: बिल्कुल लिया जाए।
0: लें।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से हम स्वागत करते हैं।
1: जी,
0: तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, हमारे सखियों और सखाओं ने?
1: हमारे जो सखियां हैं, जो हमारे सखा लोग हैं, सभी कुछ बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। तो एक हमारे जो जो श्रोता है वो लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के हित के लिए बनाई जाती है और लोकतंत्र का यही एक मौलिक पहलू भी है। ऐसे में लोकतंत्र के परिवर्धन और संवर्धन का ये आज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस खास मायने रखता है और इसीलिए इसे मनाया भी जाता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता और अपनी बात कहने के अधिकार का सम्मान भी है। सच्चा लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हम दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों को भी ईमानदारी से निभाते हैं।
0: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत कर दी थी और इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोकतंत्र के सिद्धांतों, मूल्यों और स्थिति की समीक्षा करना और इसे मजबूत करना है। यानी जब हर आवाज मायने रखती है तो लोकतंत्र बेहतर परिणाम देता है और ये खास आज के दिन मनाया जाता
1: बिल्कुल
0: है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि
1: जी,
0: इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया भी जाता है।
1: तो इस समय लोकतंत्र क्या कहता है?
0: यही कि गीत सुन दिया जाए।
1: जी बिल्कुल।

0: तो आरती, हमारी बहुत सारी सखियों ने, बहुत सारी महिलाओं ने ख्वाब को हकीकत का रंग भी दिया
1: बिल्कुल
0: है ना, और उसी में एक नाम है सुमिता घोष का।
1: जी। तो कहते हैं ना कि किसी के पास हुनर होना बड़ी बात है, लेकिन उस हुनर को सही पहचान और सही अवसर मिलना उससे भी बड़ी बात है। हमारे देश की गांवों में सदियों से महिलाएं खूबसूरत कढ़ाई करती आई हैं, हाथ करके एक पर बुनाई करती आई हैं, कढ़ाई करती आई हैं, और अपनी पारंपरिक कलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती आई हैं।
0: बिल्कुल आरती, सही कहा तुमने, लेकिन एक सवाल ये कि अक्सर इतने सुंदर काम को देखकर भी मन में आता है कि क्या इन हुनरमंद हाथों को उनके हुनर का उचित मूल्य मिल सकता है? बस इसी सवाल को अपने काम का आधार बनाया हमारी आज की सखी विशेष यानी सुमिता घोष ने।
1: जी, और सुमिता घोष का जन्म हुआ कोलकाता में और उन्होंने मुंबई से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टर डिग्री की उन्होंने हासिल की। और सुमिता का असली विश्वविद्यालय था उनका अपना देश, यानी कि अपना ग्रामीण भारत।
0: भारत, कितनी बड़ी बात है ना।
1: जी
0: और एक लंबे समय तक सुमिता ने ग्रामीण राजस्थान में एक ट्रस्ट के साथ काम किया और उनका काम ग्रामीण विकास, समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ काम था,
1: बिल्कुल।
0: है ना।
1: और इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, सच में जो ग्रामीण भारत को चुनते हैं, सच में वो कुछ कर गुजरने के लिए मन में पहले ही सोच के रखते हैं।
0: ठान लेते हैं।
1: जी
0: मैं बताऊं, मैं एक ऐसी महिला से मिली थी जो एनएसडीएन थी और उन्होंने नागालैंड जाकर वहां के जो लोग थे उनको चुना कि मैं उनको एक्टिंग सिखाऊंगी।
1: अरे वाह।
0: जो वहां का जो ग्रामीण तबका था, जो अशिक्षित था, वहां जाकर उन्होंने एनएसडी पास आउट करने के बाद वहां स्थान चुना और वहां जाकर वो आज भी काम कर रही
1: बहुत
0: हैं।
1: बहुत बड़ी बात है
0: कितनी
1: ये,
0: बड़ी बात
1: सही
0: है,
1: बात
0: जबकि
1: है।
0: हम एनएसडी से निकलकर सीधा मुंबई की
1: हाँ,
0: शरण
1: सबका
0: में आते
1: अधिकतर यही होता
0: हैं
1: है।
0: ना, और हम फिल्मों
1: जी
0: की तरफ आते हैं, लेकिन उन्होंने वो स्थान चुना जहां कोई जाना नहीं चाहता
1: जी
0: और उन लोगों की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता है, लेकिन
1: बिल्कुल
0: उन्होंने वो स्थान चुना और वहां लोगों को कलाकारी से जोड़ा। तो
1: जी
0: ऐसे ही सुमिता घोष हैं जो कि वो सोच रही थी कि कैसी संस्थाएं होनी चाहिए जो समाज में जो असमानताएं हैं और अन्याय है उसे कम करने में हमारी मदद कर सकती
1: जी
0: हो।
1: बिल्कुल। और ये सब सोचते हुए उनके मन में एक विचार आकार लेने लगा था कि गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करना बहुत जरूरी है। किस तरह कारीगर और ग्राहक के बीच सीधा रिश्ता बनाया जाए, परंपरा को आधुनिक बाजार से कैसे जोड़ा जाए, यही विचार आगे चलकर रंग सूत्र बना। लेकिन विचार को हकीकत में बदलना आसान भी नहीं था।
0: बिल्कुल, इतना आसान तो नहीं होता है। जब भी कोई व्यवसाय शुरू करना हो तो सबसे पहले उसकी जो जरूरी चीज है वो क्या है? पैसा,
1: बिल्कुल
0: पूंजी, है ना। और सुमिता घोष को भी पूंजी की जरूरत थी, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी जो थी दान देने वाली संस्थाएं, और उन्हें इसलिए फंड नहीं करना चाहती थी क्योंकि रंगसूत्र एक चैरिटी नहीं बल्कि व्यवसाय के रूप में काम करने वाला सामाजिक उद्यम था।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बैंक भी ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पर्याप्त व्यावसायिक अनुभव और ऋण के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं थी उनके पास। सुमिता के मन में यही बात चल रही थी कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें एक ख्याल आया, अगर इन्हीं कारीगरों के हुनर से ये संस्था बनेगी तो क्यों ना वो इसके मालिक भी बन जाए।
0: कितनी बड़ी बात उनके
1: जी,
0: दिमाग में आई जो कि हर एक के दिमाग में नहीं
1: क्योंकि
0: आती है।
1: अपना तो सब सोचते हैं कि हम
0: हाँ
1: अपना व्यवसाय खड़ा कर लें,
0: हाँ
1: लेकिन जो हमारे साथ काम करने वाले हैं उनको, उनके लिए सोचकर इतनी बड़ी बात सोचना बहुत बड़ी बात
0: बिल्कुल,
1: है।
0: और कि वही मालिक भी बने हम

0: सोचते हैं काम तो हम शुरू कर दें,
1: हाँ
0: मालिक भी हम बन जाएं,
1: जी
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: हमारे विचार में यही रहता है ना
1: जी
0: ज्यादातर
1: हाँ
0: कि मालिकाना हक जो है हम पाना
1: हमें
0: चाहते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान के लगभग 1,000 कारीगरों ने आगे बढ़कर कंपनी में 1,000 रुपए का निवेश किया, यानी शुरुआत हुई कारीगरों की अपनी भागीदारी से।
1: जी
0: और ये केवल पैसा जुटाने का तरीका नहीं था, बल्कि एक सोच थी कि कारीगर सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि व्यवसाय का भागीदार भी हो सकता है।
1: बिल्कुल एक बहुत अच्छी शुरुआत करी उन्होंने और यही रंगसूत्र की सबसे खास पहचान बनी। रंगसूत्र की यात्रा पहले 2004 में एक उत्पादक कंपनी के रूप में शुरू हुई और फिर 2006 को क्राफ्ट्स इंडिया के रूप में पंजीकृत हुई। और रंगसूत्र का उद्देश्य था कि ग्रामीण कारीगरों को नियमित काम और टिकाऊ आजीविका से जोड़ना, साथ ही उनके पारंपरिक कौशल को भारत और दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना।
0: सबसे बड़ी बात ये थी।
1: जी
0: और यहाँ बात केवल आरती हस्तशिल्प बेचने की नहीं थी,
1: जी
0: बात थी हुनर, बाजार, सम्मान और स्वामित्व, इन सभी को एक
1: एक
0: साथ
1: साथ
0: लाने की।
1: जी
0: और रंगसूत्र से जुड़े कारीगरों में बड़ी संख्या महिलाओं की थी, तो नीति आयोग के अनुसार रंगसूत्र में 2,000 से अधिक कारीगर शेयर होल्डर रहे और लगभग 80% कारीगर महिलाएं हैं। तो कारीगरों की भूमिका सह मालिक, सह निर्माता, प्रबंधक और बोर्ड सदस्य के रूप में भी वहां पर रही है।
1: बिल्कुल। और यानी माल जो महिला है उनके हाथ में सिर्फ सुई और धागा नहीं आया बल्कि साथ में उनके हाथ में निर्णय लेने की ताकत भी आई।
0: बिल्कुल
1: और सुमिता घोष के रंगसूत्र पर लिखे एक लेख में एक महिला कारीगर के अनुभव को बताया गया है कि कंपनी के शेयर उसके नाम की उन संपत्तियों में शामिल थे जिन पर उसका अपना अधिकार था। अपनी कमाई से उसके पास अपने बैंक खाते और खर्च के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी आई थी।
0: और यही वो बदलाव था जिसे सुमिता घोष सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानती थी।
1: जी
0: रंगसूत्र ने पारंपरिक कढ़ाई, हथकरघा और अन्य हस्तशिल्प कौशल को आधुनिक बाजार की जरूरतों से जोड़ने का काम किया, और इसका उद्देश्य था ग्रामीण कारीगर केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बड़े ग्राहकों और वैश्विक बाजारों तक इनकी पहुंच बन सके।
1: बिल्कुल। और रंगसूत्र ने बड़े बाजार भागीदारों के साथ में काम किया है। इस तरह एक गांव में बैठा कारीगर अपने हाथों से तैयार किए गए उत्पाद को दुनिया के दूसरे हिस्से के ग्राहक तक पहुंचते हुए देख सकता था। सुमिता घोष के काम को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। 2016 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें ग्रामीण कारीगरों और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े उनके कामों के लिए मिला था।
0: बिल्कुल सही कहा। तो एक तरफ गांव की कच्ची गलियां, दूसरी
1: जी
0: तरफ दुनिया का बड़ा बाजार, इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की जो कोशिश, या यूं कहें बहुत बड़ी कोशिश, बहुत बड़ा काम सुमिता घोष ने किया, उस पुल का नाम क्या है? रंग
1: रंगसूत्र
0: सूत्र।
1: जी
0: और सुनीता घोष ने साबित किया कि अगर किसी महिला के हाथ में हुनर है तो उसे केवल काम नहीं, साथ में काम का उचित मूल्य, अपनी पहचान और अपने फैसलों की ताकत भी मिलनी चाहिए।
1: बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि अगर आप किसी हुनर आपके आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको तराशना बहुत जरूरी है ना। और उसको तराश के जब आप अपने लिए उसको उपयोग करते हैं ना तो अपना ही नहीं साथ में अपने परिवार का, अपने साथ में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं या आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उन सबका भी भला करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और ग्रामीण तबकों में क्या होता है आरती, महिलाएं एक साथ समूह में इकट्ठी
1: जी
0: होकर
1: हाँ
0: वो लघु उद्योग,
1: हाँ
0: लघु
1: हाँ
0: कुटीर उद्योग जिसे हम कहते हैं,
1: जी
0: शुरू करती हैं छोटे छोटे, और उनमें अलग अलग चीजें बनाती हैं, फिर वो सब मिलकर अपना घर भी चलाती हैं। तो इस
1: बिल्कुल
0: तरह के भी जो है कुटीर उद्योग गांवों की महिलाएं खासतौर से, लेकिन
1: बिल्कुल
0: उनको एक बड़ा व्यक्ति ऐसा मिल जाए, बड़ी सोच वाला, जो उन
1: जी
0: सबको इकट्ठा करके इस तरह का एक बहुत बड़ा,
1: एक मालिकाना हक भी दे दे साथ में
0: हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और
1: जी
0: बहुत सारी ऐसी महिलाएं हमने देखी हैं जो 70-80 महिलाओं का समूह इकट्ठा करके गृह उद्योग धंधे शुरू करती हैं, और वो वहां पर सभी को जो है अपने अपने तरीके से मालिकाना हक भी मिल
1: बिल्कुल।
0: जाता है।
1: और ये काम करने से उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास आता है ना कि हम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें शहर जाना पड़े कुछ काम करने के लिए।
0: वो ग्रामीण
1: हम
0: तबके में
1: बिल्कुल
0: रहकर भी
1: हम
0: कर
1: अपने
0: सकती
1: घर में
0: हैं
1: रहकर, अपने गांव में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाती है, सबसे बड़ी बात है स्त्री
1: बिल्कुल
0: का आर्थिक रूप से मजबूत होना।
1: जी
0: और अभी क्या जरूरी है?
1: अंतराल।

0: हाँ तो आरती, पता है कभी कभी हम बहुत बेचैन होते हैं ना, तो कागज के दिल पे कुछ ना कुछ लिखने लग जाते हैं
1: हाँ बिल्कुल.
0: और इसी चक्कर में हम साहित्यकार भी बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, कवि बन जाते हैं।
1: जी
0: और कहते भी हैं कई बार आपका मन बहुत बेचैन है, मन में बहुत सारी बातें हैं, तो उन्हें कागज पर लिख दो, एक डायरी
1: बिल्कुल.
0: मेंटेन करो, कहा जाता है ना कि डायरी लिखो, ताकि जो सहन शक्ति जवाब दे गई है वो आपकी कलम से आपकी किताब में एक
1: बिल्कुल
0: संकलन के रूप में आ
1: आ
0: जाए।
1: जाएगी. और वैसे भी कहते हैं ना, अगर आप लिख लेते हैं ना कोई भी चीज, तो आपका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है,
0: हाँ
1: आप थोड़े शांत हो जाते हैं.
0: बिल्कुल,
1: तो बहुत जरूरी, लिखना तो वैसे भी बहुत अच्छा है
0: बहुत अच्छी बात है, लेकिन
1: जी.
0: अगर आप लेखक नहीं भी हैं तो अपनी सहनशीलता को बनाए रखने के लिए लिखने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, ताकि
1: जी
0: जैसे ही गुस्सा आया, लगा कि कुछ बोलने वाली हूं, तुरंत कागज पेन
1: बिल्कुल.
0: निकाला और उस गुस्से को कागज के द्वारा अंकित कर दो, तो एक

0: कागज पे वो गुस्सा उतर जाएगा
1: बिल्कुल,
0: और
1: आप
0: हाँ
1: बाद में से इरेज कर सकते हैं, मिटा
0: उसे
1: सकते
0: मिटा
1: हैं,
0: सकते हैं, आप मिटा सकते हैं, फाड़ सकते हैं कागज को कि
1: बिल्कुल
0: आपका गुस्सा निकल गया, लेकिन
1: जी
0: मन आपका शांत हो जाता है।
1: जी
0: तो इसीलिए कहते भी हैं कि धैर्य रखिए, धैर्य का फल क्योंकि मीठा होता है। और आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में क्या है कि धैर्य रखने का जो कड़ा इम्तिहान है, एक तरह से ये बहुत बड़ी परीक्षा हो जाती है।
1: जी
0: अगर किसी से हमारी लड़ाई हो गई, किसी ने हमारी बात काट दी, तो हम गुस्से में आ जाते हैं। सड़क पर ट्रैफिक मिल गया तो हम परेशान हो जाते हैं। मोबाइल में हम इतना कुछ लिखते हैं, अगर हमें लाइक नहीं मिले
1: अरे
0: पर्याप्त, किसी ने असहमति जता दी, किसी ने
1: जी
0: काट कर दी, किसी ने आपको पसंद नहीं किया, तो हम गुस्से से भनभना जाते हैं और
1: बिल्कुल
0: लगते हैं क्या जो बात कर देंगे, और बात गर्मा गर्म स्थिति तक पहुंच भी जाती है।
1: बिल्कुल, अक्सर ट्रैफिक में तो अक्सर ही ऐसा होता है ना कि लोग एकदम से लड़ पड़ते हैं कि क्यों आप आगे निकल, अगर कोई आगे निकल जाए, कोई पीछे रह जा रहा है तो वो लड़
0: हाँ
1: रहे हैं, मतलब कोई भी किसी भी बात पे हम लड़ सकते
0: मतलब
1: हैं,
0: हम अपने वाहन में बैठे बैठे भी गुस्सा निकाल देते हैं
1: बिल्कुल
0: और इतने गुस्से में आ जाते हैं कि कई बार हम इस तरह की पढ़ भी रही हैं स्थितियां कि ट्रेनों में दो लोगों के बीच में तकरार हुई और बात
1: जी
0: कहां से कहां पहुंच गई, यानी सहनशीलता की कमी होना।
1: बिल्कुल, और सहनशीलता का मतलब हर बात को चुपचाप सह लेना भी नहीं होता है, और जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों उस समय आप थोड़ा सा धैर्य अगर हम बना के रखते हैं ना, और दूसरों के विचार को सुनते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, कोई भी बात हो तुरंत प्रतिक्रिया देने से ये होता है ना कि हम गुस्से में होते हैं उस समय, तो उस समय हमें पता नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: तो हम सिर्फ गुस्से में अपनी गुस्सा निकाल रहे होते हैं, तो उस वक्त हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो रिश्ते भी उससे खराब हो
0: खराब
1: सकते
0: होते
1: हैं,
0: हैं,
1: दोस्ती टूट सकती है, तो
0: बिल्कुल
1: इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए
0: हाँ
1: कि हम जो भी बोलें सोच
0: सोच
1: समझ कर
0: समझ
1: बोलें,
0: के तोल मोल के बोल कहा जाता
1: बिल्कुल
0: है ना। और आज के जो टेक्नो समय जो आ गया है, इसमें क्या हो गया आरती, कि हमें हर चीज तुरंत पाने की आदत हो गई। एक क्लिक
1: बिल्कुल
0: में हमें सारी चीजें मिल जाती है, सामान हुआ कुछ भी, कुछ ही सेकंड से हमें मिल जाता है। एक समय होता था जब हमें सोचना पड़ता था कि हमें जाना है, घर से बाहर निकलना
1: जी
0: पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा। अब बस केवल एक क्लिक करने की जरूरत होती है
1: बिल्कुल,
0: और सामान आपके घर पर आ जाता
1: अब
0: है।
1: 5 मिनट का अगर सामान हमारे पास 5 मिनट में नहीं पहुंचा तो एकदम से हम गुस्से में आ जाते हैं, फिर हम उसको
0: हाँ
1: फिर चिल्लाने लगते हैं जो सामान लेकर आया, कि 5 मिनट से 1 मिनट कैसे ज्यादा हो गया,
0: ज्यादा कैसे आपने कर दिया। सोचिए हमारी सहन शक्ति कितना जवाब दे गई है।
1: जी
0: तो ये जो तनाव है, काम का जो दबाव है, प्रतिस्पर्धा है, और ये जो रोज की दिनचर्या में इतनी व्यस्तता है, हमारी झुंझलाहट को और हमारी स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है।
1: बिल्कुल, और जरा सोच कर देखिए, जब कोई हमारे संदेश का तुरंत जवाब नहीं देता है तो मन में पहला विचार क्या आता है कि आखिर आया क्यों नहीं जवाब,
0: हाँ क्या
1: हमने जो
0: बात हो
1: लिखा
0: गई।
1: था क्यों नहीं आया उसका जवाब, शायद मुझे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, हम अक्सर जल्दबाजी में पूरी बात जाने बिना नतीजे पर पहुंच जाते हैं और यहीं से गलतफहमी शुरू हो जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। हो सकता है आपने कोई सवाल पूछा और सामने वाले के पास टाइम नहीं हो, या वो उस वक्त यात्रा में हो या परेशानी में हो, जवाब नहीं दे पाया हो। हमने उसका तुरंत तुरंत
1: बिल्कुल
0: अपने तरीके से उत्तर निकाला और फटाफट उसे अपना ही जवाब दे डाला। और
1: बिल्कुल, या हो
0: रिश्ते,
1: सकता है वो नहीं देना चाह रहा हो उस
0: हाँ
1: समय,
0: ये भी हो
1: कुछ
0: सकता है।
1: सोचना चाह रहा हो, समझना
0: हाँ
1: चाह रहा हो, या उसके बारे में पड़ताल करना चाहता हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी स्थिति हो सकती है।
1: जी
0: तो सहनशीलता की जो कमी है, वो उसका असर हमारे व्यवहार पर ही नहीं पड़ता आरती, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है, हम जानते ही हैं। और परिवार में छोटी सी बात पर बहस, दोस्तों में नाराजगी और कार्यस्थल पर मतभेद होना, इन सब के पीछे कई बार हमारी ये जो अधीरता है, यही जिम्मेदार होती है।
1: बिल्कुल, सोशल मीडिया ने भी हमारी सहनशीलता को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है, अलग विचार रखना लोकतंत्र और समाज की स्वाभाविक विशेषता होती है, लेकिन असहमति को व्यक्तिगत विरोध मान लेना रिश्तों और सामाजिक संवाद दोनों के लिए नुकसानदायक होता है, कि असहमति अगर कोई हमसे असहमत है तो हमें लगता है कि वो हमारे विरोध में है, हम उसके विचार को नहीं जानना चाहते, वो किस तरह से क्या सोच रहा है वो उसको नहीं जानना चाहते, बस हम सोचते हैं कि ये हमारे विरुद्ध है,
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और हम उसका सम्मान भी नहीं करना चाहते हैं कि
1: बिल्कुल
0: उसके विचारों का हम सम्मान करें। अगर
1: बिल्कुल
0: वो हमारे विरुद्ध कोई बात कह भी रहा है, तो पहले समझें कि वो क्यों कह रहा है।
1: बिल्कुल, सबका अपना अपना नजरिया है
0: विचार हो सकता है,
1: जी
0: नजरिया हो सकता है आपके प्रति। और सहनशीलता को बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए ये जरूरी है कि हम धैर्य रखें, धैर्य पूर्वक दूसरे को सम्मान दें, सुने, दूसरे व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने का मौका दें, और गुस्से में तुरंत जवाब नहीं दें, कुछ देर रुकें, सोचें, दूसरे की सोच को समझें, क्योंकि जरूरी नहीं कि सामने वाला गलत ही हो और हम ही सही हों।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही जरूरी बात ये भी है कि हमें छोटी छोटी बातों को जाने देना सीखना होगा, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, और कई बार हमारी चिड़चिड़ाहट हमारे जो सामने है उसके सामने वाले की गलती से ज्यादा हमारी अपनी थकान और तनाव का परिणाम होती है जो हम चिड़चिड़ा रहे होते हैं इस समय, तो हम अक्सर सहनशीलता को कमजोरी मान बैठते हैं, जो बिल्कुल गलत सोच है।
0: बिल्कुल, हमें लगता है आक्रामक

0: रूप बनाए रखना ही आज के जमाने में बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं
1: जी
0: होता। आपकी सहनशीलता बहुत बहुत मायने रखती है आपके
1: एक
0: लिए।
1: अलग पहचान बनाती है कि
0: हाँ
1: इतना सब सामने वाला इतना गुस्सा हो रहा है, इतना चिल्ला रहा है ना, लेकिन आप एकदम शांत खड़े हैं।
0: आपने अपनी सहनशीलता को बनाए रखा है, कितनी
1: बिल्कुल
0: बड़ी बात है। इसे कमजोरी नहीं समझना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: हम समझते हैं कि अरे सामने वाला कितना कमजोर है, देखो इतना सुनने के बाद भी चुप बैठा रहा, मैं होती तो ऐसा कर देती, है
1: जी,
0: ना। ये
1: लेकिन
0: जो

0: बैठा रहा, मैं होती तो ऐसा कर देती, है
1: जी,
0: ना। ये
1: लेकिन
0: जो
1: चुप बैठना सबसे बड़ी ताकत है।
0: बहुत बड़ी, और सामने वाले को भी हिला कर रख देती
1: बिल्कुल
0: है ना आपकी चुप्पी। तो सहनशीलता का मतलब कमजोर होना बिल्कुल नहीं है, और देखा जाए तो अपने गुस्से और भावनाओं को नियंत्रण रखें, अपने आप अपने भीतर एक बहुत बड़ी ताकत महसूस करेंगे। इसके
1: जी,
0: अलावा हम दूसरे को धैर्य से सुने, रिश्तों को समझें, और कम बोले, सोच समझ कर बोले तो विवाद भी कम होगा, और जब हम किसी की असहमति का सम्मान करेंगे तो लोगों में हमारा संवाद भी मजबूत होता है।
1: बिल्कुल। और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर मतभेद को विवाद बनाना भी जरूरी नहीं है, और हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदलना भी जरूरी नहीं है। कभी-कभी थोड़ा ठहर जाना, और सबसे जो कहते हैं ना, सबसे बड़ा समझदारी वाला कदम होता है,
0: वो ये
1: तो
0: होता
1: थोड़ा
0: है।
1: रुक जाइए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, और दूसरे को भी समझने की कोशिश करिए कि वो अगर
0: बिल्कुल
1: ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है, क्या है। तो उसके बिना आप एकदम से प्रतिक्रिया मत दीजिए।
0: मत दें, और स्पेस दें खुद को भी और दूसरे के विचारों को
1: बिल्कुल
0: भी, ताकि सोचने समझने का मौका मिले। एक
1: बिल्कुल
0: श्रोता लिखते हैं कि सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि भीतर की शक्ति है। ये हमें सिखाती है कि हर उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता, कुछ उत्तर स्वयं समय दे देता है। सहन करने की अपनी एक गरिमा है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते खामोशी से बच जाते हैं और कुछ सच वक्त के साथ सामने भी आ जाते हैं, है
1: बिल्कुल।
0: ना।
1: और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सहनशीलता का मतलब हर बात सहना नहीं, बल्कि हर बात पर रिश्ता को तोड़ना नहीं होता है। कुछ बातों को समझकर, कुछ को मुस्कुराकर छोड़ देना ही शायद रिश्तों की सबसे खूबसूरत समझदारी है।
0: और हमारी एक श्रोता ने बहुत सुंदर कविता लिखी है हमारे आज के जो भी सेगमेंट्स हैं उन पर,
1: जी
0: कि मंदाकिनी जी की मधुर आवाज, आरती जी का साथ, सखी सहेली सजाए हर दिन नई बात, लोकतंत्र का संदेश, सहनशीलता की पुकार, सुमिता घोष संग रंग सूत्र की सुंदर बहार, कान भरना मुहावरे की दुनिया का ज्ञान, खाने की अतरंगी आदतों से मुस्कान, विविध भारती की ये प्यारी सी महफिल, मंदाकिनी जी आरती जी बनाए हर पल दिलकश
1: बहुत
0: मंजिल।
1: अच्छा लिखा है। तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जीवन में कोई भी निर्णय लेते समय सहनशीलता की बड़ी जरूरत होती है, मगर आज के युग में जो चीज सबसे ज्यादा इंसानों के अंदर से खोती जा रही है वो है सहनशीलता का गुण। आक्रामकता को इंसान अपना गुण मानने लगा है, जीवन में आक्रामकता पूरा धागा ही उलझा देती है, ये इंसान सोचता ही नहीं। सहनशील और धीर गंभीर इंसान की छवि अलग ही दिखती है, सो सहनशील बनिए और जीवन को सुगम बनाइए।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर लिखा है। एक श्रोता लिखती है कि जहां सहनशीलता है वहां प्रेम, सम्मान और रिश्तों की गर्माहट भी बची हुई है, वरना आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान के पास सब कुछ है, बस ठहर कर सुनने और समझने का धैर्य कम होता जा रहा है। छोटी सी बात पर नाराजगी, जरा सी असहमति पर रिश्तों में दूरी और अपनी बात मनवाने की जिद सहनशीलता को धीरे धीरे पीछे छोड़ रही है। सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि रिश्तों को बचाए रखने की एक बहुत बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि खत्म होती जा रही सहनशीलता का कारण मानसिक तनाव है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगातार देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण मानसिक दबाव और धैर्य की कमी होती है। इसमें सोशल मीडिया का भी काफी प्रभाव है। इसके द्वारा तुरंत मिल रही जानकारी या मिल रहे मैसेज ने पुराने जमाने के खत लिखने के धैर्य भरे दौर को खत्म कर दिया है। मतलब हम जो सोच समझ के लिखते थे, दो दो तीन तीन दिन में खत
0: पहुंचते
1: जी, तो वो मजा इस टेक्नोलॉजी में कहां, जो खतों के इंतजार में पोस्टमैन की राह तकते रहने में हुआ करता था। सहनशीलता पाने के लिए तनाव को छोड़कर शांत लहरों पर जीवन की नाव पर सवार होना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है। और अब हम भी गीत संगीत की नाव पर सवार हो जाते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: गीत सुनते हैं।

0: तो आरती, जब हम बात कर रहे हैं आदतों की कि हमारे अंदर सहनशीलता का होना कितना जरूरी है, वहीं कुछ आदतें ऐसी भी हैं जो
1: जी
0: हमारी हमें हंसी का पात्र भी बना देती हैं, है
1: बिल्कुल.
0: ना। अभी बताऊं तुम्हें, आज जब मैं सुबह चाय के साथ बिस्किट खाती हूँ हमेशा, आज मैंने सोचा कि नमक का पराठा खा लूं और चाय में डुबो कर खा लूं,
1: अच्छा
0: है ना, तो
1: जी
0: कैसा लगेगा। और बाद में मुझे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाई, क्योंकि ये कैसा कॉम्बिनेशन मैं सोच रही थी, ये खाने का भला कोई ऐसे
1: जी,
0: खाता है क्या।
1: लेकिन
0: मैं
1: सच में
0: ऐसा
1: मजा आता है बहुत.
0: मजा आता है, तुमने खा के देखा है
1: बिल्कुल
0: इसका
1: बिल्कुल, मैंने खाया है.
0: मतलब। ठीक है।
1: और मतलब हर व्यक्ति का खाने का अंदाज अपना अपना होता है. किसी को गरम गरम रोटी के साथ ठंडी ठंडी दही पसंद होती है, तो कोई चाय के साथ नमकीन की जगह बिस्किट को चाय में डुबोकर खाने का मजा लेता है. कुछ आदतें इतनी अनोखी होती हैं कि सामने वाला देखकर बस यही कहता है कि भला ऐसे भी कोई खाता है. जैसे कि मैं खाती हूँ, कैसे, जलेबी को सॉस में.
0: डुबो
1: जी
0: कर। और मैंने देखा हमारी एक नून है, वो पहले दाल पी जाती है और उसके बाद जो चावल है ना वो सूखे खाती है, तो हम
1: अच्छा.
0: उन्हें हंसते थे कि अब आप क्या गोल गोल लौटने वाली हैं कि दाल चावल मिल जाएगा आपका। वो ऐसे ही खाती थी, पहले दाल का कटोरा जो
1: अच्छा.
0: लिया और दाल पूरी पी ली, उसके बाद वो सूखे चावल जो सफेद चावल हम उबाल के रखते हैं उन्हें खाती थी। तो ये
1: अच्छा.
0: भी एक अजीब ही किस्म की आदत है जिसे हम कई बार जब देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। बच्चों में तो ऐसी आदतें हमें मिल जाती हैं कि सब्जी अलग रोटी अलग, दाल
1: हाँ.
0: को चावल के साथ मिलाने में वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कुछ लोगों को मैंने, जैसा तुमने कहा, मीठी जलेबी और सॉस के साथ खाती हो तुम,
1: जी
0: और कुछ लोग खाने को बहुत धीरे धीरे चबाकर खाते हैं, जबकि कुछ लोग फटाफट फटाफट फटाफट फटाफट एक रोटी को दो ही उसमें खा लेते हैं टुकड़ों में। तो ये खाने के जो तरीके हैं हालांकि हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए सबसे बड़ी बात कि इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी खा रहे हो लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल. जैसे कि हमारी एक श्रोता है जो लिखती है कि आज खाने की अतरंगी आदतें देखकर मुझे भी कुछ याद आ गया. मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए, और जिस घर में रहने के लिए आए वहां के मकान मालिक के बच्चों को हमने देखा कि वो चावल के साथ दूध का पाउडर खाते थे. उनको देखकर हमें भी शौक चढ़ा, पर हम लोग नहीं खा पाए. सच में तो बहुत ही अलग चीज है.
0: बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखती है कि खाने की आदतें, भाई आदतें सभी की अच्छी हो ऐसा नहीं हो सकता, और यदि है तो फिर कहनी ही क्या। लेकिन अतरंगी शब्द या ये तो कार्यक्रम से स्पष्ट हो सकता है कि भोजन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि हमारे मूड, दिमाग और विज्ञान से गहराई से भी जुड़ा है। भावना और मूड का असर खाने की तीव्र इच्छा अक्सर तब होती है जब हम तनाव में होते हैं या हमें किसी अपने की याद आती है। कई बार खाने के तुरंत बाद घबराहट होती है, बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि हमारा पेट हमारे दिमाग से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। अगर
1: जी
0: नाक बंद हो तो हमें खाने का असली स्वाद पता ही नहीं चलता, और 80% हिस्सा हमारी सूंघने की क्षमता

0: पर भी निर्भर करता है। और
1: जी
0: अचानक कभी कभी किसी खास चीज को देखने से भोजन से अरुचि हो जाती है या हमें कै जैसे उल्टी महसूस होने लगती है। तो जब तक आपकी तीव्र इच्छा नहीं हो आप कोई भी चीज नहीं खाएं, ये ध्यान रखिए।
1: जी और एक हमारी सखी हैं जो लिखती हैं कि सखियों कभी कभी हरी मूंग की दाल वाली खिचड़ी में गुड़ डालकर खाया है, कभी बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा
1: तो इन्होंने यानी खिचड़ी में गुड़ डाल के खाया है, तो ये भी हमें करना चाहिए ट्राई इसका मतलब।
0: हाँ
1: और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि खाने की अतरंगी आदतें, भाई आदतें तो सभी अच्छी ही हों ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यदि है तो फिर कहना ही क्या, लेकिन अतरंगी शब्द है या अतरंगी, ये इन्होंने कार्यक्रम में स्पष्ट होगा, तो अब इनको शायद स्पष्ट हो गया होगा।
0: वही एक श्रोता लिखती है कि हमारे घर वालों की आदत है कि कटोरे में ही दाल सब्जी को मिला के मिक्स करके खाते हैं,
1: अच्छा
0: और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मेरे घर वालों को लगता है कि जो मेरे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको कि खाना खाने से इससे स्वादिष्ट लगता है, मतलब एक ही कटोरे में दाल चावल
1: सब
0: मिक्स
1: चीजें।
0: करके
1: हाँ
0: खाया जाए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही मेरे घर वालों की आदत है समोसे में सब्जी को पूरी तरीके से मिक्स करके खाने की, ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
1: अच्छा
0: और लोग कहते हैं कि एक बार खाकर तो देखो, पर मैं इसे आज तक नहीं खा पाई। इन दोनों ही तरीकों को मैं कभी भी नहीं मतलब ये इसको स्वीकार ही नहीं कर पाए हैं कि कभी दाल भात को साथ नहीं खाया इन्होंने एक कटोरे में लेकर, और ना समोसा खा पाए हैं।
1: अच्छा तो होता है ना कुछ अतरंगी आदतें ऐसी होती है ना कि समझ नहीं आता कि ये ऐसी क्यों होती है, मतलब इस तरह से हम कैसे खा लेते हैं, दूसरे को जब हम खाते देखते हैं ना तो लगता है कि कैसे खा रहा है इस तरीके से ये।
0: हाँ, एक लिखते हैं कि हमें कभी कभी बूंदी में सेव मिलाकर खाना अच्छा लगता है। हाँ, ये तो होता है,
1: हाँ
0: बूंदी और जो भुजिया जिसे हम
1: जी
0: नमकीन
1: हाँ
0: भुजिया उसे मिलाकर लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन हर एक को वो भी पसंद नहीं आता है।
1: बिल्कुल, सबके अपनी अपनी आदतें अलग अलग तरीके से होती हैं।
0: हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि हल्की फुल्की आदतें, अतरंगी खाना खाने की आदत, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बड़े अलग तरीके से खाना खाते हैं। और जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे कुछ याद आ गया, मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए, और जिस घर में रहने आए वहां के मकान मालिक के बच्चे को हमने देखा कि वो, अच्छा अभी तुमने बताया कि चावल
1: जी
0: के साथ वो दूध, अमूल दूध इस्तेमाल करके खा रहा था, तो ये देखकर उन्हें बड़ी हंसी आई। उन्होंने इसको खा के देखा लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और एक लिखते हैं कि मुझे चाय के साथ कुल्फी चूसना बेहद पसंद है।
1: अरे भैया चाय के साथ कुल्फी,
0: सर्द
1: ये
0: गर्म
1: तो
0: नहीं
1: बहुत
0: होता
1: सच
0: है।
1: में बिल्कुल अलग है।
0: हाँ, वैसे मुझे भी एक साथी मिले और उन्होंने कहा कि अभी कॉफी पी है, चलिए अब जो है हम आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद उन्होंने कहा कि चलिए अब गर्म दूध पी लेते हैं। मैंने कहा भाई
1: जी
0: ये कैसी आदतें हैं आपकी, लेकिन वो आराम से कर रहे थे इन बातों
1: बिल्कुल
0: को।
1: नहीं, जिनको आदत होती है ना इस तरह की चीजें खाने की, तो उनको कहीं कोई परेशानी नहीं होती और खा खा
0: लेकिन
1: सकते हैं।
0: हमें तो हो जाती है, अभी हमारे श्रोताओं को हो जाएगी अगर हमने उन्हें एक गाना
1: गीत नहीं
0: नहीं
1: सुनवाया
0: सुनवाया तो।

0: बातें हैं।
1: तो हमारा एक सेगमेंट तो रह गया अभी, यानी कान भरना, मुहावरों की दुनिया।
2: क्या बात है। हाँ हाँ
1: तो कान भरना, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कान भरना मतलब कान में कोई भौतिक चीज या वस्तु को भरना नहीं होता है। इस मुहावरे का अर्थ किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत, चुगली करना या उसके प्रति गलत भावना या संदेह पैदा करना होता है। गुजराती में इसे कान भंभेरनी बोला जाता है।
2: अच्छा, वही एक श्रोता लिखती है कि कान भरना यानी चुगली करना, मेरे हिसाब से चुगली करने वाले से ज्यादा गलत ही चुगली सुनने वालों की होती है, क्योंकि यदि हमसे कोई चुगली कर रहा है और अगर हम उसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएं तो सामने वाला दोबारा चुगली करने की कोशिश भी नहीं करेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि किसी के मन में दूसरे के प्रति गलत या नकारात्मक बातें डालना, उसे भड़काना, जैसे कि हम कोई दो लोग अच्छे मित्र हैं तो उनके बीच में एक तीसरे व्यक्ति ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया किसी दूसरे के कान में, तो इससे दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा हो जाए, तो इसे कान भरना कहते हैं।
2: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि कान भरना, भाई कान है तो भरे ही जाएंगे ना। फिर कर्ण पूरण की विधिवत विधि भी बताई गई है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कर्णेंद्रिय का विकास भी होता है, किंतु यहाँ कान भरने का तात्पर्य किसी के खिलाफ किसी को उकसाने मात्र से ही है, और कच्चे कान वाले लोग इसके शिकार शीघ्र बन जाते हैं, और इस दृष्टिकोण से ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और एक और हमें जो श्रोता है जो लिखते हैं कि चुपके से किसी के खिलाफ ऐसी बातें कहना जिससे कि वो सामने वाले व्यक्ति से नफरत करने लगे या उस पर शक करने लगे। ऐसा माना जाता है कि यदि खाने में जहर मिल जाए तो उसका इलाज संभव है, लेकिन कानों में घोला गया जहर रिश्तों को अंदर से खोखला बना देता है और इसका कोई आसान इलाज भी नहीं है। तो क्या कह सकते हैं इसको?
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और कह कही इसका सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है जब हम जिक्र करते हैं कान भरने का। तो अब तो कार्यक्रम का समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और कान भरें अपने श्रोताओं के।
1: बिल्कुल।
2: तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
2: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: सेल्युलॉइड के सितारे। श्रोताओ, आज इस प्रोग्राम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
1: कमलजीत जी नमस्ते।
2: नमस्कार
1: आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।
2: जी।
1: अच्छा, आज के माहौल में जब टीवी का बोलबाला है और आप करीब हर चैनल पर नजर आते हैं, तो कैसा लगता है ये सब देखकर?
2: बड़ा अच्छा लगता है सविता जी, क्योंकि कलाकार अगर काम अच्छा कर रहा हो और वो ऑडियंस उसे सराहती है तो कलाकार का उत्साह बढ़ता है, वो और भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है, तो ये सब अच्छा लगता है कलाकार को।
1: अच्छा, आप तो अभी टीवी के स्टार बन गए, फिल्मों में नाम तो आपका बहुत हुआ बतौर हीरो, लेकिन कभी ये सोचकर मलाल नहीं होता कि मैं स्टार नहीं बन सका?
2: देखिए, सिनेमा से

0: मुझे बहुत इश्क है, अब भी है, पहले भी था, क्योंकि मैं बेसिकली फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ,
1: जी
0: तो सिनेमा से तो मुझे बहुत लगाव है, इश्क है, मोहब्बत है, लेकिन वहां न बन सका इसका मलाल मुझे नहीं है। अब भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दुनिया में मैं समझता हूँ कभी भी कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है कि मैं फिर से वापस सिनेमा करने लगूं, लेकिन शर्त यह है कि मुझे मेरी पसंद के रोल अगर मिलेंगे और मुझे अच्छा लगेगा कोई भी रोल, तो मैं करूंगा
1: तो इसी बात पे गाना हो जाए आपकी पसंद का।
0: जरूर।
1: कौन सा गाना सबसे पहले सुनाना चाहेंगे आप?
0: जिन दिनों जब मैं फिल्में किया करता था,
1: जी
0: तो उस जमाने की एक फिल्म का जो मेरी सबसे पहली ऑलमोस्ट फिल्म थी, शंकर हुसैन, उसमें गाना था बड़ा खूबसूरत, लता जी ने गाया था, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे, सीढ़ियां धड़कती हैं।

0: आपने संघर्ष तो खूब किया
1: जी
0: और बहुत समय लगा, मुझे लगता है पहचान बनाने में। तो ये पहचान आपकी कैसे बनी?
1: ओके, कुछ लोगों की इमारत जो है सबसे पहले बन जाती है, वो दिखने लगती है। कुछ लोग बुनियाद काफी देर तक बनाते रहते हैं, तो मेरे हिस्से में मेरा ख्याल बुनियाद ने काफी टाइम ले लिया, और फिर जब बुनियाद मिली तो उसके बाद लोगों ने काम भी अप्रिशिएट किया और फिर काम मिलना भी बाकायदा शुरू हो गया।
0: मेरे ख्याल बुनियाद की बात निकली तो बुनियाद सीरियल भी आपका काफी हिट हुआ था,
1: जी उसी
0: उसी
1: गांव,
0: से बात बनी
1: जी
0: ना?
1: जी जी उससे काफी टेलीविजन में काम मिला उसके बाद।
0: अच्छा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या एक अजीब सी बात है कि आपकी फिल्म हिट होती है तो इसका फायदा तो सबको होता ही है, तो क्या सीरियल में भी ऐसा चलन है? क्योंकि चैनलों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप बहुत से सीरियल कर रहे हैं, सांस है, बुनियाद, दरार, किस्मत, फरमान वगैरह, तो ये कॉम्पिटिशन को आप कैसे फेस करते हैं?
1: ये सब ऐसा ही है जैसे फिल्मों में होता है, मतलब फिल्में अगर आपकी चलती हैं आपको काम मिलता रहता है, सीरियल आपके चलते हैं, चल रहे हैं, आपका काम अप्रिशिएट हो रहा है तो आपको काम मिलता रहेगा। देखिए बेसिकली अगर आप डॉक्टर हैं,
0: जी
1: आपके पास अगर पहले दो मरीज आए और वो आपके हाथों मारे जाए तो फिर मेरा ख्याल आपके पास कोई दूसरा मरीज नहीं आएगा। तो ऐसा ही है, एक्टर की अगर पहली फिल्म या पहले दो तीन सीरियल चल गए तो उस बेचारे को काम मिलता रहता है, वरना उसी डॉक्टर वाला हिसाब होता
0: अच्छा, आपने फिल्में भी बहुत की और सीरियल भी बहुत किए।
1: है।
0: शंकर हुसैन फिल्म की आपने, फिर सत्ते पे सत्ता की, अशांति की, माचिस हाल ही में की,
1: जी माचिस हाल में,
0: एक शर्त भी फिल्म की थी, और सीरियल तो आपने मेरे ख्याल से सैकड़ों कर लिए। तो फिल्म और
1: या आप
0: सीरियल
1: शिकायत कर रही हैं या बता रही हैं, मुझे
0: क्योंकि
1: समझ
0: मैं तो रोज ही जब टीवी
1: नहीं
0: ऑन करती हूँ तो
1: आ
0: आप
1: रहा।
0: ही आप दिखाई
1: नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो
0: देते
1: असल
0: हैं।
1: में ये कई लोग ये सोचते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो नए चैनल्स आए हैं इसमें प्रोग्राम्स क्योंकि रिपीट होते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये बहुत आ रहा है, पर मैं ज्यादा काम लेता नहीं हूँ, उतना ही लेता हूँ जितना मैं अच्छी तरह निभा सकूँ जिसे। हाँ
0: अच्छा, एनीवे
1: तो क्या कह रही थी आप?
0: फिल्म और सीरियल आप करते हैं इकट्ठे, तो अभिनय में क्या कुछ फर्क होता है? जैसे कि स्टेज और फिल्म में अभिनय का फर्क होता है, इस तरह से सीरियल और फिल्म में भी फर्क होता है
1: नहीं,
0: क्या?
1: अभिनय में फर्क थिएटर और सिनेमा में शायद हो, और है भी थोड़ा सा, वहां पे एक दो सुर ऊपर करना पड़ता है थिएटर
0: लाउड
1: में।
0: होता
1: जी
0: है
1: हाँ थिएटर में,
0: जी।
1: सिनेमा में क्योंकि एक एक आपकी टाइट क्लोजअप में, इतने बड़े क्लोजअप में आपका एक एक नस दिखती है कैमरे को, तो उसमें आपको इतना एग्जेजरेट नहीं करना पड़ता। ऐसा ही मैं समझता हूँ, टेलीविजन और सिनेमा में एक्टिंग में कोई फर्क नहीं। हाँ डायरेक्शनल टेक्निक्स में फर्क हो सकता है भी, क्योंकि ये मीडियम जो टेलीविजन का है वो क्लोजर मीडियम है शॉट्स का, लेकिन एक्टिंग के लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ। आप जैसे अपना कैरेक्टर किरदार वहां निभाते हैं सिनेमा में, वैसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ता
0: फिल्म में तो बहुत ऑथेंटिसिटी दिखानी पड़ती है ना,
1: है। क्यों क्यों हम
0: कैरेक्टराइजेशन
1: लोग टेलीविजन
0: करना
1: में नहीं दिखाते? मेरा ख्याल हम लोग टेलीविजन में ज्यादा ऑथेंटिसिटी
0: ज्यादा
1: दिखाते
0: होते
1: हैं।
0: हैं। यही बात तो
1: बिल्कुल
0: उगलवाना चाह रही थी
1: गुस्सा आ गया मुझे, गुस्सा दिलवा के है।
0: अच्छा, जब शुरू शुरू में सीरियल बनने
1: हाँ
0: शुरू हुए थे तो फिल्मी एक्टर इसे, माफ कीजिए, छूत की बीमारी समझते थे, कहते थे कि नहीं, छोटे से बक्से में कौन अभिनय करेगा सविता
1: हाँ
0: जी, अब तो बड़ा एक्टर जो भी है वो सब सीरियल में ही अपने आप को कैश कर रहे हैं। क्या ख्यालात हैं इस बारे में?
1: देखिए मेरे ख्यालात जो हैं इस बारे में बड़े सीधे और ये हैं,

0: मैं सिनेमा को नंबर वन समझता हूं, बट टेलीविजन का शुक्रगुजार हूं कि इसने मुझे काम दिया और मेरा किचन चलाया। लेकिन सिनेमा जैसा मैजिक टेलीविजन पर नहीं है और नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेलीविजन जो देखा जाता है वो ऐसे माहौल में देखा जाता है जहां पे और इतनी 100 डिस्ट्रैक्शन है। आपका बच्चा रो रहा है, अभी खाना बनाना है, वो उसने स्कूल जाना है, कल के स्कूल की तैयारी करनी है, तैयारी करनी है, कुछ भी करना है। सिनेमा एक हॉल में देखा जाता है। इट इज अ ग्रेट मैजिक, इट इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक अचीवमेंट, आई थिंक सिनेमा इज। तो मेरे लिहाज से अगर मुझे आज कहा जाए सिनेमा और टेलीविजन में कौन सा बेटर मीडियम है, डेफिनेटली सिनेमा है। लेकिन क्योंकि सर्वाइवल, हर एक को सर्वाइव करना है यहाँ, तो जो सिनेमा में नहीं है वो टेलीविजन में है, जो सिनेमा में बहुत अच्छा जिनका करियर जा रहा है वो टेलीविजन में नहीं आना चाहते, दैट इज अंडरस्टैंडेबल।
1: बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी बात पे, इसी अच्छी बात पे एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए
0: तो फिर अच्छे से शायर का ही सुनाते हैं।
1: जो आपको पसंद हो।
0: गालिब की एक गजल है, मुझे बड़ी पसंद है और जगजीत ने बहुत खूबसूरती से गाई है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक,
1: अरे
0: कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।
1: वाह वाह वाह।

0: कमल जी, पहले एक्टर स्टेज को स्टेपिंग स्टोन बना के फिल्मों में आते थे,
1: जी
0: मतलब प्रवेश करते थे,
1: जी
0: और अब उल्टा हो रहा है कि फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं। ये उल्टी हवा कैसे बह निकली?
1: फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं, मेरा ख्याल इसलिए आ रहे हैं जो फिल्मों से निकाले जा रहे हैं वो सीरियल में आ रहे हैं। सीधी बात है,
0: निकाले नहीं जा रहे, दोनों जगह काम
1: जिनको
0: कर रहे
1: जिनको
0: हैं।
1: जिनको काम नहीं मिला, जिनको मैंने वही पहले ही अर्ज किया है कि अगर जो जिसका करियर बहुत अच्छी तरह चल रहा है फिल्म में, वो टेलीविजन में नहीं आना चाहता है, एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, ऐसी कोई वही बात नहीं है, और ऐसा उसको अपटी बिहेवियर समझा जाए ऐसा भी नहीं मैं समझता।
0: मतलब रोजी रोटी का सवाल है
1: नहीं,
0: वहां भी
1: रोजी रोटी के नहीं,
0: शायद।
1: भाई वो क्यों लेसर मीडियम में आएगा? अगर मैं नॉवल लिख रहा हूं

0: तो मैं रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर के लिए क्यों करूंगा? सीधी बात, अगर
1: सच
0: मेरे अगर मेरा नॉवल बिक नहीं रहा है तो मैं न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग करूंगा, ये है।
1: अच्छा, स्टार सिस्टम, इसका फिल्म जगत में साम्राज्य है जो लंबे समय से चल रहा है। सिर्फ ऐसा होता है कि चेहरे बदल जाते हैं, और अब यही बात सीरियल में भी लागू होती है। आपके क्या विचार हैं?
0: वो इसलिए क्योंकि बेसिकली मीडियम जो हैं सारे ये हम मूवी बिजनेस कहते हैं, टेलीविजन बिजनेस है।
1: बिजनेस।
0: जी हाँ, तो जब तक आपके प्रोग्राम बिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो आपको एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलेंगे। एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेंगे तो चैनल कैसे रन करेगा? तो चैनल नहीं रन करेगा तो वो फिर पूरा विशेष सर्कल है बड़ा। तो इसमें जो एक्टर्स जो थोड़े बहुत ऊपर हैं, टॉप लेवल पे हैं, उनके प्रोग्राम हिट हो गए हैं या उनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो और क्योंकि लोग ज्यादा पसंद करते हैं तो चैनल कहता है कि भाई इन एक्टर्स के साथ बनाओ।
1: मतलब यह ऐसा तो नहीं जो पैसा लगाता है वो बोलता है हमको यही चाहिए, जैसे फिल्मों में प्रोड्यूसर पैसा
0: पैसा
1: लगाता
0: नहीं,
1: है
0: हाँ तो ऑब्वियसली
1: ना?
0: जो जो पैसा लगाता है वो ये सोच के लगाता है कि मुझे पैसा रिटर्न होगा, मतलब रिटर्न में आएगा पैसा, वापस आएगा, जो लागत है मेरी वो कम से कम वापस वसूल होगी। तो वो कैसे होगी कि पॉपुलर एक्टर को लेंगे आप? पॉपुलर हर हर जो चीज है जो डिमांड में है, जिसे सराहा जा रहा है इस वक्त, पब्लिक उसे चाह रही है, उसे
1: जी।
0: ही आप लेके बनाएंगे ना।
1: अच्छा, जो ऐसे एक्टर हैं जिनको काम नहीं मिलता तो उनको क्या करना चाहिए आपकी राय में? मतलब
0: आप देखिए, हमें भी तो काम नहीं मिला था
1: उनको फिल्मों में
0: इनिशियली।
1: भी काम नहीं मिलता और सीरियल में भी काम नहीं मिलता। कहाँ
0: एक तो
1: तो उम्मीद
0: आप
1: जगी थी कि सीरियल बन रहे हैं तो जिनको फिल्मों में काम नहीं मिलता उनको सीरियल में भी
0: देखिए,
1: मिलेगा।
0: अपने बारे में ऑब्जेक्टिव होना बड़ा मुश्किल है जिंदगी में। जब जब आदमी यहाँ पे ट्रेन में बंबई में उतरता है तो वो ये आप उससे पूछें, भाई तेरा अपने बारे में क्या विचार है, क्या राय है, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं यार मुझे नहीं लगता मैं मेरा करियर यहाँ बनेगा और मुझे लगता है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए, ये कोई कहता है?
1: कोई नहीं कहेगा।
0: तो
1: हाँ।
0: फिर तो या तो अपने बारे में बहुत ही ऑब्जेक्टिव आदमी हो, अपने आप को 1 साल दे, 2 साल दे, 2.5 साल दे, 3 साल दे के भाई, या फिर बाप बहुत रईस हो समझे ना, जिसे कोई फर्क ना पड़े कि बेटा कर रहा स्ट्रगल तो करता रहेगा। तो अब ये तो अपने पे निर्भर करता है कि मैं अपने आप को कितना वक्त देता हूं और मैं कितना, मतलब मुझे कितनी अपने बारे में समझ है और मैं कितना इंटेलिजेंट हूं कि मैं कहूं कि यार बस अब बहुत हो गया, लेट अस ट्राई समवेयर एल्स।
1: कमल जी, जिंदगी का सफर तो हमेशा चलता रहता है, जैसे सुख दुख आते हैं इसी तरह फिल्म सीरियल और सीरियल फिल्म, ये चक्र घूम रहा है, बरसों से घूम रहे। कहीं ये थम गया तो क्या होगा, ये सोचकर कैसा लगता है?
0: हाँ, बहुत डर लगता है। देखिए, हर आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका काम कब अच्छा चलता रहे और कब तक चलता रहे इसका कुछ भरोसा नहीं, तो ये तो हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है हर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी को और हमारे कॉम के लोगों को यानी एक्टर्स को, कि भाई ये जो इस वक्त बड़ा अच्छा चल रहा है, ये कल को ऐसा ना हो कि सब हमारे प्रोग्राम बंद हो जाएं और हमें काम ही ना मिले, क्योंकि हम तो एक ही काम जानते हैं ये, और यही नहीं मिल यही मिलना बंद हो जाएगा तो फिर हम क्या खाएंगे? हमने माना दिल्ली में रहें मगर खाएंगे क्या?
1: अच्छा, आपकी पत्नी भी तो इसी मीडिया में है, तो आप दोनों अपने इस प्रोफेशन को, अभिनय को किस तरह से एडजस्ट करते हो? कभी प्रोफेशनल जेलसी का सामना तो नहीं करना पड़ता?
0: नहीं, क्यों, मैं जेलसी इसलिए नहीं क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, तो इसका मुझे अंदाजा है और मैं जानता हूं इस बात को अच्छी तरह। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल उसमें जितना सेक्रीफाइस, और मेरा ख्याल औरत जात में जितना सेक्रीफाइस करने की वो है
1: ताकत।
0: ताकत, इसी वजह से जब से हमारे बच्चे हुए हैं अब तक उसने कोई काम नहीं किया। शी रिफ्यूज टू वर्क, मतलब वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की ग्रोथ में लगाना चाह रही थी। तो अब रिसेंटली उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट अभी साइन किए हैं, पायलट्स किए हैं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा 9 साल का है, मेरा छोटा बेटा आदित्य 5 साल का है, बड़ा सिद्धार्थ, तो ये जब तक छोटे थे तब तक उन्होंने कोई काम लिया ही नहीं, तो इस वजह से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई वो बाहर है तो घर नहीं है।

0: उसके जहन में घर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, जहां पे कुछ मतलब जहां पे सब सही रहना चाहिए।
1: तो ये एक तरह से एडजस्टमेंट कहीं या सेक्रीफाइस पति के लिए।
0: नहीं नहीं वो जब बहुत छोटी थी मेरी वाइफ अनुराधा, तो उन जब बच्ची थी खुद, तो उनसे पूछा जाता था, भाई बड़े होके तुम क्या बनोगी, तो कहती थी मम्मी। तो उसे शुरू से बच्चों का शौक रहा है, घर का शौक रहा है, उसे घर को सजाने का, घर को बनाने का, और बेसिकली शी इज अ होम बर्ड।
1: तो इसी एक सुंदर सी बात पे कुछ आपकी पसंद का सुंदर सा गाना।
0: सुंदर सी बीवी के लिए।
1: हाँ, सुंदर सी बीवी के लिए, क्यों नहीं।
0: तो चलिए बीवी की बात चलिए, तो फिर उन्हीं की फिल्म का एक गाना सुनाते हैं,
1: कौन सी फिल्म का?
0: उत्सव का। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन क्यों महका।
1: बेला महका।

0: अच्छा, आप जब छोटे थे तो तभी से एक्टर बनना चाहते थे या बड़े होने पर इस तरफ रुझान हुआ? क्योंकि हमारे माँ बाप अक्सर कहते हैं हम अपने बच्चे को बड़े होने पर डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे वगैरह वगैरह।
1: जी आप हम क्योंकि मैं हूं सहारनपुर का हूं,
0: जी
1: और मेरा ना कोई चचा ना कोई ताया ना कोई अंकल ना कोई आंटी यहाँ पे बंबई में थी, तो जाहिर है मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि मैं बंबई जाकर एक्टर बनूं। तो सहारनपुर में पढ़ रहे थे, थोड़ा बीच में मसूरी भी पढ़ा मैं, तो फादर चाहते थे कि मैं आईएएस पे जाऊं, पर इतनी पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं थी। थोड़ा वो शायरी का शौक था, जो दोस्त थे हमारे और आज तक वही दोस्त हैं सहारनपुर में, उन वो भी बड़े आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड थे, तो हमें फिल्में देखने का तो बड़ा शौक था। मैं दिलीप साहब का फैन था, देव साहब का फैन था बहुत बड़ा।

0: और बल्कि हमारे ग्रुप्स होते थे, कुछ दिलीप साहब के फैन होते थे और उनके सामने आप दिलीप साहब की बुराई नहीं कर सकते थे, और कुछ दिलीप देव साहब के फैन होते तो बाकायदा झगड़ा हुआ हो जाया करता था। लेकिन ये कि एक दिन मैं खुद एक्टर बनूंगा, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था।
1: तो कोई फिल्म देखी थी, उसका असर हुआ, कुछ तो बात हुई होगी, या कोई ड्रामा किया, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ जहन पर, दिमाग पर?
0: मुझे बेसिकली क्या सबसे जो जहन में प्राइम चीज थी वो ये थी कि अपने दो पांव पे खड़ा होना जल्दी से जल्दी जिंदगी में। तो जो भी उस वक्त कंपटीशन आते थे, जैसे एनडीए का आया, डफरिन का आया, ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट होता था उसका आया, तो मैं सब कंपटीशन में बैठ जाता था। और बल्कि मैं एनडीए में ऑलमोस्ट हो भी गया था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम एक हो गया था उसकी वजह से मैं जा नहीं सका। तो जब ये सब चल रहा था तो उन दिनों एक फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म भी आया, तो वो मैंने फॉर्म चुपके से काट कर वो भेज दिया, और चुपके से, और अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, क्योंकि छोटे शहर में अगर ये पता लग जाए कि इसने फॉर्म भेजा था और ये सिलेक्शन नहीं हुई तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता कि भाई लवंडा हीरो बनने गया था, कुछ नहीं हुआ। समझा? तो इस वजह से मैंने बताया नहीं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कॉल आ गया, और
1: स्कॉलरशिप भी मिलता था ना
0: नहीं
1: वहां पे?
0: स्कॉलरशिप तो नहीं मिलता था,
1: नहीं,
0: नहीं इंस्टीट्यूट
1: अच्छा।
0: में स्कॉलरशिप उन दिनों नहीं था, इन दिनों हो तो मुझे मालूम नहीं। तो हमारा दिल्ली में स्क्रीन टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ, और हम सेलेक्ट हो गए।
1: अच्छा, अभी तो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको भी इस लाइन में लाना चाहेंगे, या वो जो खुद बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ सोचा आपने?
0: जाहिर है, देखिए हर बाप ये कहता है जो बनना चाहता है बच्चा वो बने, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, ये उम्र कोई भी उम्र हो, तो वो इंडिकेशन देता है कि उसका रुझान किस तरफ है। तो बाप को ये कोशिश करनी चाहिए जिस तरफ उसका रुझान है उसे वो सब सप्लाई करे, चीजें, इंसेंटिव उसके शौक को पूरा करने के, तो वो अपना इवेंचुअली करियर बनाएगा। तो वो मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चों को, कुछ को एक को स्पोर्ट्स का शौक है, एक पढ़ाई का शौक है, तो अगर इसमें निकलते हैं, और अगर उनको बीच में सिनेमा का भी हो जाता है और एक्टर बनना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, आई थिंक इट्स द नोबलेस्ट प्रोफेशन।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
1: अच्छा, आजकल आजकल के समय में फिल्म इंडस्ट्री को कला का गढ़ माना जाता है, गढ़ है ना? तो इसमें तो मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा, कोई बता रहा था कि कलाकार हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि हर आदमी इसी लाइन में आना चाहता है। तो आपकी क्या
0: ये
1: ख्याल है इस
0: आप
1: बारे में?
0: मेरा ख्याल फिगर्स इससे बहुत ऊपर
1: ऊंची है
0: ऊंचे
1: ना?
0: होंगे,
1: हाँ
0: क्योंकि
1: हाँ
0: और आप इस बात की बात कर रही हैं, जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहा था उस वक्त मेरा दोस्त एक इंजीनियर बनने के लिए रुड़की यूनिवर्सिटी में गया था,
1: जी।
0: उस वक्त 75,000 इंजीनियर खाली था।
1: ओ
0: तो देखिए एक क्लास में 60 लड़के होते हैं, पहले दो तीन तो दो तीन ही आएंगे, पांच दो तीन थोड़ी आ जाएंगे, तो किसी का वो जो 60वां है एक 60वां भी होगा वहां। तो उसको ये बात से घबराना नहीं चाहिए कि भाई मेरा नंबर 60 आया, अब तेरा नंबर 60 यहां आया, कहीं कोई और चीज जिनमें ट्राई करेगा वहां नंबर 1 हो जाएगा। तो अपने अपना पोटेंशियल खुद देखना चाहिए, खुद ढूंढना चाहिए ये।
1: मतलब इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए,
0: हाँ
1: चप्पा चप्पा कोशिश करते
0: बिल्कुल
1: रहना
0: बिल्कुल,
1: चाहिए।
0: बाकायदा
1: इसी बात पे आपको आपको वो जो गाना अच्छा लगता है, आप भी थे ना
0: चप्पा चा
1: माचिस फिल्म में,
0: माचिस माचिस में
1: हो
0: था,
1: जाए
0: ये बिल्कुल हो जाए,
1: हैं? चप्पा
0: जलाइए
1: चप्पा चरखा
0: जलाइए
1: चले
0: माचिस।
1: तो सुनते हैं वही गाना, चप्पा चप्पा चरखा चले।
0: जी

0: कमल जी, आपको कभी कभी फुर्सत भी मिलती होगी, मतलब जब समय मिलता है शूटिंग से, तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं?
1: देखिए, जब मुझे समय मिलता है शूटिंग से तो सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, तो अपने बच्चों के साथ और घर पे अपनी बीवी के साथ हम लोग इकट्ठा रहते हैं। और अगर कुछ एक दो दिन की ज्यादा छुट्टी हो जाए इकट्ठी, और बच्चों का भी वीकेंड हो, सैटरडे संडे हो, तो हम लोग खंडाला वंडाला चले जाते हैं। तो ऐसे हमको, हम पूरे परिवार को, हमको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। तो अंग्रेजी में कहते हैं, ड्रॉप ऑफ अ हैट वी स्टार्ट फॉर एनी डायरेक्शन ऑन दिस अर्थ। तो इसीलिए मैं हर हर साल अपनी छुट्टियां जो है वो बच्चों की छुट्टियों के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ, एक तो दिवाली में और एक समर वेकेशन उनकी, तो उनके साथ मैं छुट्टियों पे चला जाता हूँ।
0: तो इसी बात पे कोई बच्चों के लिए गाना?
1: बच्चों के लिए क्या गाना, वो जब छोटा था, छोटे थे तो इनको एक गाना बड़ा पसंद था, और मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों, क्योंकि वो उनकी उम्र का गाना है नहीं, लेकिन वो कुछ झूमने से लगता था। मेरा छोटा बेटा जो था, तो वो गाना है ना, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तो मेरे ख्याल से वो मेरे बेटे को चांद लफ्ज समझ में आता होगा, तो उस वजह से वो यूज टू एंजॉय दैट नंबर, तो वो सुनवा देते हैं।
0: ठीक है, तो आइए सुनते हैं। रूप सुहाना लगता है।

0: अच्छा, कभी मन नहीं करता आपका भी कि मैं डायरेक्शन करूं?
1: आप दीजिए डायरेक्शन मैं आप लाइए
0: क्योंकि
1: प्रोड्यूसर तो मैं ये भी
0: बीस
1: कर
0: पच्चीस साल हो गए आपको
1: डालूंगा
0: लोगों की बातें सुनते कि ऐसा ऐसा करो, अभी नहीं ऐसा करो, तो आपका तो दिल करता होगा कभी मैं भी कैमरे की
1: कभी
0: बागडोर संभालूं।
1: मैं उस बंदे का कॉलर पकड़ के कहूं कि अब तुम ऐसा करो नहीं मैं, आप देखिए, मैं यहाँ पे एक्टिंग कोर्स करके पूना से यहाँ आया था। बड़ा मजा आता है इस काम में, इस प्रोफेशन में, लेकिन एज यू गो ऑन तो आप भी बहुत कुछ अलावा एक्टिंग के और भी आपके जो मीडियम है से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सीखते हैं। साउंड के बारे में सीखते हैं, पिक्चर के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। तो ये मीडियम ही इतना फैसिनेटिंग है कि अगर मुझे कल को ये चांस मिलता है कि मैं डायरेक्टर डायरेक्शन करूं तो मैं जरूर इसमें भी एक क्या कहना चाहिए,
0: चांस लेना
1: गोताबाना
0: है अच्छा,
1: हाँ चांस लेना चाहूंगा, व्हाई नॉट,
0: फिल्म में या सीरियल में?
1: किसी में भी।
0: किसी में भी।
1: हाँ
0: अच्छा, कहते हैं ना कि डायरेक्टर बड़े आर्टिस्टों को डायरेक्ट नहीं करता, बल्कि आर्टिस्ट उन्हें डायरेक्ट करते हैं ये क्या बात सही है?
1: पहली बात तो बड़ा आर्टिस्ट कौन है, क्योंकि
0: आप बड़े आर्टिस्ट हैं भाई
1: मैं तो ऐसा नहीं करता हूं तो अगर आप, हाँ मैंने आज तक कभी हमेशा अपने डायरेक्टर की सुनी है। देखिए, आर्टिस्टिक डिस्कशन जो हमारी सेट पे होती है कि भाई अगर हम ऐसा कर लें तो शायद ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस लगे, अगर हम यूं डायलॉग लाइन को यूं करें तो शायद ये डायलॉग ही ना लगे और ऐसे लगे कि वाकई बातचीत हो रही है दो कैरेक्टर्स के बीच में, तो इतना तो हमारा दखल है ही और होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर नॉट पपेट्स, हम लोग कठपुतलियां नहीं है, एक्टर्स आर नॉट कठपुतलियां,
0: जी।
1: हम सोचने वाले जीव जंतु हैं और हमको इस बात का थोड़ा बहुत ज्ञान भी रहता है कि ये लफ्ज जो है या ये लाइन, ये डायलॉग ही लगेगी, क्लीशेड लगेगी, मेलोड्रामेटिक लगेगी या के सच्ची लगेगी। सच्चा लगना बड़ा जरूरी है।
0: ये सच्ची बात जो है आपने बोला, सच्चा लगना जरूरी है। कहते हैं कि अच्छा एक्टर वही होता है जो कि अच्छा इंसान होता है, तो ये बात भी क्या सही है? क्योंकि मैंने देखा
1: पता
0: है
1: नहीं,
0: कई एक्टर बड़े अच्छे हैं, बट बेसिकली दे आर नॉट गुड ह्यूमन बींग्स।
1: मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी एक्टर अच्छा है, अगर आर्टिस्ट अच्छा है, चाहे वो पेंटर है चाहे वो एक्टर है, तो उसके काम से आप लुत्फ लीजिए ना, वो बुरा है या अच्छा है भाड़ में जाए
0: वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, कभी आप पीछे मुड़ के देखते हैं जहां से आपने शुरुआत की, और उसके आप तो बहुत सीढ़ियां आगे चढ़ लिए, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे बहुत सारे साथी छूट चुके होते हैं, कुछ को सफलता मिलती है, कुछ को सफलता नहीं मिलती। आपको कैसा लगता है ये?
1: देखिए, ऐसा आया कि मेरे साथ जो थे इंस्टीट्यूट से निकले वो मेरा ख्याल अगर इस लाइन में कुछ मकाम हासिल नहीं कर पाए तो कहीं और हैं और बड़े अच्छे ओहदे पे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं। पीछे मुड़ के मैं नहीं देखता, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं ऐसा करता हूं।
0: आप पीछे मुड़ के नहीं

0: मैं कोशिश कर नहीं करता पीछे न देखने की, पर मेरी फितरत में ही नहीं है, मैं पीछे देखता ज्यादा नहीं हूं।
1: मतलब जो छूट गया वो छूट गया।
0: हाँ, मतलब कुछ उसमें मेरा फिलोसॉफिकल एटीट्यूड भी नहीं है, या फिर मेरी ये कोशिश भी नहीं है कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूं, इतना एरोगेंस भी नहीं है उसमें। बस ये मेरे साथ रहा है कि कुछ पुराना याद नहीं आता मुझे ज्यादा, और ये भी नहीं एटीट्यूड मेरा कि मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये सब भी नहीं। बस ये जो इस वक्त कर रहा हूँ बड़ा अच्छा लगता है। मेरे एक दोस्त हैं रमेश दत्त, हमारे सहारनपुर में, वो बकौल उनके वो कहते हैं भाई अब बस जीना अच्छा लगता है।
1: वाह वाह,
0: हाँ, तो ये काम अच्छा लगता है
1: मतलब
0: जो
1: छैया छैया।
0: हाँ, छैया
1: तो
0: छैया
1: आइए फिर सुनते हैं छैया छैया।
0: बेशक।

0: अच्छा कमल जी, आप एक्टिंग के अलावा क्या करते हैं?
1: एक्टिंग
0: एक्टिंग के अलावा
1: देखिए
0: एक्टिंग मतलब
1: बेसिकली
0: 24 घंटे आप एक्टिंग करते रहते हैं,
1: वही तो
0: वेदर
1: नहीं ना
0: कैमरा इज ऑन और नॉट।
1: नहीं ये मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्टिंग है जो मैं उसके सामने करता हूँ
0: कैमरे के
1: कैमरे के
0: सामने
1: सामने
0: जी।
1: उसमें से एक्टिंग बिल्कुल खत्म कर दूं। तो
0: हाँ, अच्छा
1: हाँ तो बाकी क्योंकि सारी जिंदगी में हम एक्टिंग करते ही रहते हैं तो कम से कम यहां से बिल्कुल निकाल के इसका वजूद खत्म करना चाहता हूं। कितना कामयाब हुआ हूं ये पता नहीं लेकिन कोशिश मेरी यही है। बाकी इसके अलावा
0: जी,
1: मैं मुझे शौक है खेलने के। आई हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन बचपन में स्कूल में भी और अब भी टेनिस खेलता हूं मैं और टेनिस से बहुत लगाव है बहुत इश्क है और क्रिकेट से भी। अपने बच्चों के साथ घर में जब बीवी नहीं होती तो फुटबॉल खेलता हूँ तो क्योंकि बीवी हम लोग को खेलने नहीं देती
0: शीशे वीशे टूट जाते
1: तो
0: हैं
1: जब वो घर में होती हैं तो हम लोग थोड़ा बाहर आंगन में खेल लेते हैं। जब वो बाहर होती हैं तो फिर हम लोग अंदर खेल लेते हैं मैं और मेरे दोनों बच्चे।
0: अच्छा, तो आप उनकी मदद भी करती होंगे किचन में, या वो आपकी ही मदद करती रहती हैं
1: नहीं
0: अक्सर?
1: मैं उनकी मदद इस लिहाज से करता हूँ कि मुझे खाने का बड़ा शौक है तो
0: अच्छा
1: वो खाना इतना अच्छा लजीज बनाती हैं कि मैं उसको खाने में मदद करता हूँ। बाकी मुझे खाना हालांकि आई एम सरप्राइज माई

0: क्योंकि मैंने इतना लंबा अरसा बैचलर लाइफ लीड की है मुंबई में कि और अकेला रहा हूं जिंदगी में, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आया और खाना बनाने की कोशिश भी नहीं की मैंने। हालांकि मेरा एक भाई है, वो बड़ा अच्छा खाना बनाता है, मुझे नहीं बनाना आता।
1: अच्छा, आपके आने वाले कोई सीरियल या फिल्म?
0: या एक अभिमान कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं राकेश सारंग, उनके साथ कर रहा हूँ, मनीष गोस्वामी का सीरियल है और वो आने वाला है। बाकी तीन ऑलरेडी चल रहे हैं तो मुझे वक्त भी नहीं है कि मैं ज्यादा कर सकूं। ये खत्म होने वाले हैं, कुछ सांस जैसे हुआ ये खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा आई टेक ऑन। एक आधा पायलट किया हुआ है और पायलट किए नीना के साथ, दूसरा हमारा पायलट शूट होने वाला है। तो ऐसा ओवरलोड नहीं करता मैं काम से अपने आप को,
1: मतलब जितना कर सकते हैं उतना ही लेते हैं आप?
0: हाँ जितना अपनी पूरी एबिलिटी, अपना पूरा कंसंट्रेशन मैं जिस काम को दे सकूं वही करता हूँ। अच्छा, आप मेरे मेरी पसंद के गाने तो सुनते रहे, आपको क्या पसंद
1: मुझे आपने एक बहुत बड़ी फिल्म की थी,
0: है?
1: सत्ते पे
0: सत्ता,
1: सत्ता,
0: जी हाँ जी
1: है
0: हाँ,
1: ना?
0: तो उसका गाना प्यार हमें किस मोड़ पे
1: आहा,
0: ले
1: ले
0: आया।
1: आया है।
0: चलिए साहब,

0: अच्छा कमल जी,
1: जनाब।
0: अगर आप अभिनय नहीं करते तो क्या करते?
1: हाँ, अभी नहीं करता। मैंने जैसे शुरू में बताया, मैं फौज में जाना चाहता था, एयरफोर्स में। तो वहां इवेंचुअली नहीं जा सका कुछ वजह। तो मुझे समझ नहीं आता वाकई मैं क्या करता, क्योंकि ये काम, इसमें आने के बाद मुझे इससे इतना इश्क हुआ इस काम से कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और काम कर सकता।
0: मतलब आदमी बेकार हो जाता है
1: हाँ,
0: कुछ
1: बेकार
0: और
1: ही
0: कर ही नहीं सकता
1: हम
0: एक्टर बन के
1: बिल्कुल
0: हैं
1: नहीं, एक्टर बन के बेकार हो जाता है ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन
0: मतलब
1: इससे अगर
0: इश्क
1: इश्क
0: हो
1: हो
0: जाता
1: जाए, अगर
0: है।
1: इससे इश्क हो जाए तो फिर मतलब और कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अगर मैं ना, अगर एक और चांस दिया जाता मुझे, तो शायद मैं स्पोर्ट्समैन होता, शायद मैं

0: टेनिस खेलने लगता।
1: अच्छा, कई ऐसे भी डायरेक्टर
0: हाँ
1: हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते थे, आपको मौका नहीं मिला, या कोई ऐसे स्टार्स, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किए, कोई बचा होगा जो आपके फेवरेट रहे हो और आपको मौका नहीं मिला होगा? तो आप तो अभी ऐसे स्टेज पर हैं कि आप जिसके साथ चाहे काम करना चाहें आप कर सकते हैं, तो अभी आप किनके साथ काम करना चाहते हैं?
0: देखिए, जिनके साथ मुझे मैंने काम किया है ऑलरेडी, उनको मैं जानता हूं और उनमें मोस्टली बड़ा मजा आया है सबके साथ काम करने में। और जिनके साथ मैंने काम नहीं किया उनके बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं, तो मैं कह नहीं सकूंगा। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं वैरायटी ऑफ एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, अलग अलग रिएक्शन मिलते हैं। वरना एक वो होता है इंस्टिंक्टिवली, आपको मालूम है अगला क्या करने वाला है, तो आपका परफॉर्मेंस और जो इंटरेक्शन है वो जरा रेपिटेटिव हो जाता
1: नहीं,
0: है।
1: मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे कोई स्टार तो होगा ना आपका फेवरेट, जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, या कोई डायरेक्टर कि इतने सालों तक तो आपको चांस नहीं मिला, अभी तो आपका समय आ
0: नहीं
1: गया
0: नहीं
1: कि मैं काम कर लूं,
0: मैं अच्छी स्क्रिप्ट में काम करना चाहता हूँ।
1: ऐसा कोई फेवरेट नहीं है या
0: नहीं
1: लॉन्गिंग नहीं है कि मैं
0: ना
1: उसके
0: ना
1: साथ काम
0: ना ना
1: करूं,
0: ना
1: ऐसा कुछ भी नहीं है?
0: नहीं,
1: चलिए इसी बात पे एक गाना सुनवा दीजिए, थोड़ा मूड अच्छा हो जाए।
0: मूड अच्छा हो जाए। चलिए, तो फिर अपनी बीवी के बात जब करता हूँ तभी मूड अच्छा रहता
1: ठीक
0: है। तो उन्हीं की फिल्म का एक और गाना सुना देते हैं आपको, मेरा वो सामान लौटा दो। गुलजार साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा।

0: इस गीत के साथ ही मैं कमल जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, विविध भारती स्टूडियो में आपने हमें अपना अनमोल समय दिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से।

सविता बजाज की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया दिनेश दाभोलकर ने, प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

0: वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: किसान वाणी प्रोग्राम दे विच मेरे वल्लों यानी कि कुलविंदर चानी दे वल्लों सारे ही किसान वीरां ते भैणां दा बहुत बहुत स्वागत है। किसान वीरों ते भैणों, जिवें कि मंगलवार नूं साडे स्टूडियो दे विच खेतीबाड़ी नाल संबंधित माहर पहुँचदे ने जिहड़े कि

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक सन खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।

अध्याय तीसरा अर्थात कर्म योग विच असी जानिया भगवान श्री कृष्णा दसदे ने कि मनुख लई कर्म करना जरूरी है। कोई भी मनुख एक पल लई बिना काम किते नहीं रह सकदा। अपने कर्तव्य नूं निष्काम भावना नाल करना चाहीदा है। कर्म दे फल दी इच्छा मनुख नूं बंधन विच पाउंदी है। महान मनुखां नूं लोकां दी भलाई लई चंगे कर्म करने चाहीदे ने। कामना ही मनुख दी सब तो वड्डी दुश्मन है। इसलिए इस ते काबू पाना चाहिदा है।

अध्याय चौथा अर्थात ज्ञान कर्म संन्यास योग विच असी जानिया भगवान श्री कृष्णा दसदे ने कि ए योग सब तो पुराना है। जदों भी धर्म दी हानि हुंदी है अधर्म वधदा है ता भगवान धर्म दी स्थापना लई अवतार लैंदे ने। ज्ञान मनुख दी अज्ञानता दे हनेरे नूं दूर करदा है। कर्म करदे होए जे मनुख फल दी आसक्ति छड्ड दवे ता ओ कर्म बंधन तो मुक्त रहिंदा है। ज्ञान यज्ञ नूं सब तो उच्चा मन्या गया है क्योंकि ज्ञानी ज्ञान राही मनुख सच नूं पछाणदा है। श्रद्धा संयम अते ज्ञान राही मनुख परम शांति अते मुक्ति नूं प्राप्त कर सकदा है।

अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्णा, आप कर्मा दे त्याग वल भी जांदे हो ते कर्म करन दी प्रशंसा भी करदे हो। इन्हां दोवां विचों जो भी कल्याणकारी है उस नूं मेरे लई पक्के तौर ते वर्णन करो। अर्जुन कहंदे ने, हे कृष्णा, तुसी कदे कर्मा दे त्याग अर्थात संन्यास दी अते कदे कर्म योग दी प्रशंसा करदे हो, दोहां विचों मेरे लई सब तो चंगा मार्ग केड़ा है, ए स्पष्ट करके दसो। अर्जुन दे मन विच संन्यास अते कर्म योग बारे दुविधा है। ओ जानना चाहुंदा है कि मनुख नूं कर्म छड्ड देने चाहीदे ने या अपने कर्तव करदे रहना चाहीदा है। अध्याय पंजवां, श्लोक दूसरा।

जो मनुख ना किसे नाल वैर रखदा है ना किसे चीज दी लालसा करदा है उसनु सच्चा सन्यासी समझना चाहिदा है क्योंकि जो मनुख सुख दुख चंगे मंदे दे द्वंद तो उपर उठ जांदा है ओ बंधना तो मुक्त हो जांदा है। अर्थात सच्चा सन्यासी बारी कपड़े या संसार छड़न नाल नहीं सगो मन विच्चों राग द्वेष अते इच्छावां दूर करन नाल हुंदा है। अर्थात सच्चा सन्यास बारी कपड़े या संसार छड़न नाल नहीं सगो मन विच्चों राग द्वेष अते इच्छावां दूर करन नाल हुंदा है।

0: फलम।
1: कुछ लोग ज्ञान योग अते कर्म योग नू वक वक मनदे ने, पर ज्ञानी लोग जानदे ने कि दोवें मार्ग इक्को परम सच दी प्राप्ति वल लै जांदे ने। अर्थात ज्ञान योग विच मनुख ज्ञान राही परमात्मा नू जानन दी कोशिश करदा है, जदकि कर्म योग विच निष्काम भाव नाल कर्म कीते जांदे ने। दोहां दा अंतिम उद्देश आत्मिक मुक्ति है। अध्याय पंजवां, श्लोक पंजवां।

0: पश्यति।
1: जो फल ज्ञान योगी प्राप्त करता है ओही फल कर्म योगी भी प्राप्त करता है। जो मनुख ज्ञान योग अते कर्म योग नू इको सच वल ले जान वाले मार्ग वजो देखता है ओही असल विच सही तत्त नू समझदा है। अध्याय पंजवां श्लोक छेवां।

कर्मयोग तो बिना केवल संन्यास प्राप्त करना औखा है, पर जो मनुख कर्मयोग विच लगा रहंदा है ओ जल्दी ही परमात्मा नूं प्राप्त कर लैंदा है। अर्थात केवल कर्म छड्ड देण नाल मन शांत नहीं हुंदा, मनुख नूं अपने कर्तव करदे होए फल दी इच्छा छड्ड देनी चाहीदी है। निष्काम कर्म मन नूं शुद्ध करदा है अते परमात्मा दी प्राप्ति दा राह आसान हो जांदा है।

कि मैं कुछ नहीं कर रहा। देखना, सुनना, छूना, सुंघना, खाना, तुरना, सोना, ये सारे काम इंद्रियां अपने अपने विषयां नाल कर रही ने। अर्थात ज्ञानी मनुख अपने आप नू कर्मा दा अहंकारी करता नहीं मानता। वह समझदा है कि शरीर अते इंद्रियां अपना काम कर रही ने, इसलिए उस विच मैं कर रहा हां वाला हंकार नहीं रहिंदा। अध्याय पंजवा श्लोक नौवां।

ना त्यागना, ग्रहण करना, अखां खोलना या बंद करना, ये सब इंद्रियां अपने विषयां विच काम कर दिया ने। ज्ञानी मनुख अंदरों ये जानदा है कि मैं इन्हां कर्मां दा करता नहीं हाँ। अर्थात इस श्लोक विच पिछले श्लोक दी गल नूं होर स्पष्ट कीता गया है। ज्ञानी मनुख कर्म ता करदा है पर कर्मां दा अहंकार या फल दी आस नहीं रखदा।

जो मनुख अपने सारे कर्म परमात्मा नूं अर्पण करके अते कर्मा दे फल नाल आसक्ति छड़ के करदा है, ओ पाप नाल उसे तरह नहीं लिप्त हुंदा जिवें कमल दा पत्ता पानी विच रहंदे होए भी पानी नाल नहीं भिजदा। अर्थात ए बहुत सोहना उदाहरण है, जिवें कमल पानी विच रहंदा है पर पानी उस नाल चिपकदा नहीं, उसे तरह मनुख नूं संसार विच रहंदिआं अपने करतव करने चाहीदे ने, पर मोह अहंकार अते कर्मां दे फल दी आसक्ति तों बचना चाहीदा है। अध्याय पंजवां श्लोक ग्यारवां।

योगी मनुख अपने शरीर मन बुद्धि अते इंद्रियां राही कर्म करदे ने, पर ओ कर्म दे फल दी आसक्ति छड़ के कर्म करदे ने। इस तरह ओ अपने मन दी शुद्धि करदे ने, अर्थात मनुख नू अपने सारे काम इमानदारी नाल करने चाहिदे ने, पर ए नहीं सोचना चाहिदा कि इस दे बदले मैनू जरूर ए फल मिले। निष्काम कर्म मन नू पवित्र करदा ए। अध्याय पंजवां श्लोक बारवां।

योगी कर्म दे फल दा त्याग करके स्थाई शांति प्राप्त करदा है। जो मनुख फल दी इच्छा नाल कर्म करदा है, ओ फल दी आसक्ति कारण बच जांदा है। अर्थात जे असी हर काम सिर्फ नतीजे दी चिंता नाल करांगे तां मन विच तनाव अते बेचैनी रहेगी, पर जे असी अपना कर्तव्य पूरी मेहनत नाल करके नतीजा परमात्मा उत्ते छड़ दईए तां मन नूं शांति मिलदी है।

परमात्मा किसे दे पाप या पुन नू अपने सिर नहीं लैंदा। जीव अज्ञानता कारण सच्चाई नू समझ नहीं पाउंदा अते ऐसे करके मोह विच फसिया रहिंदा है। जिस दा ज्ञान अज्ञानता नू दूर करदा है उस लई परम सच प्रगट हो जांदा है। अर्थात परमात्मा निरपक्ष है, ओ किसे दे चंगे या माड़े कर्मा दा दोषी नहीं। अज्ञानता ही मनुख नू सही या गलत दी असली समझ तो दूर रख दी है। जदों ज्ञान प्राप्त हुंदा है ता अज्ञानता दा हनेरा दूर हो जांदा है।

परमात्मा विच टिकी हुंदी है। जिन्ना दा मन परमात्मा विच लीन है अते जिन्ना ने परमात्मा नू ही अपना आसरा बनाया है, ओ ज्ञान द्वारा पापा तो मुक्त होके उस अवस्था नू प्राप्त करदे ने जिथों मुड़ जन्म नहीं हुंदा। अर्थात जो मनुख अपना मन बुद्धि अते जीवन परमात्मा नू समर्पित कर देंदा है, ओ हौली हौली मोह अते अज्ञानता तो मुक्त हो जांदा है। इस नू मुक्ति दा मारक कहा जांदा है। श्लोक 18।

जिन्ना मनुखां दे पाप नष्ट हो गए, जिन्ना दे मन विच शंका नहीं रही, जिन्ना ने अपने आप नूं काबू कर लिया, अते जो सारे जीवां दी भलाई विच लगे रहिंदे ने, ओ ब्रह्म नूं प्राप्त करके परम शांति हासिल करदे ने। अर्थात मुक्ति दी राह सिर्फ अपने लई जिउणा नहीं, संयम ज्ञान पापां तों दूर रहना अते सारे जीवां दी भलाई करना मनुख नूं परमात्मा दे नेड़े लै जांदी है। अध्याय पंजवां श्लोक 26।

0: छाती अते सादियां तकलीफां तो परेशान हो, बड़ियाल हस्पताल बठिंडा लेके आया है छाती दे रोगां दा सफल इलाज। मिलो डॉक्टर आंचल जैन MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन एक्स एम्स दिल्ली सीनियर रजिस्ट्रार नू। दमा COPD खंग सा चढ़ना अते एलर्जी दा सही अते आधुनिक इलाज। बड़ियाल हस्पताल नेड़े DAV कॉलेज BB वाला रोड बठिंडा। कॉन्टैक्ट 7527011711। बड़ियाल हस्पताल तुहाडी सेहत दा सच्चा साथी।
1: इस दिन आली प्रोग्राम गल्लां चो गल समाप्त हुंदा है। देओ आग्या।

जी बहुत सारे श्रोते सानू मैसेज कर रहे ने। रतन वीरू ने इस सवाल का सही जवाब दिता है जी। भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरिया जो 15 सितंबर नूं इंजीनियर डे उन्हां दी याद दे विच मनाया जाता है जी। जिला नागपुर भारत दे किस राज विच स्थित है जी। साडा जो अगला सवाल है जी, जिला नागपुर भारत दे किस राज विच स्थित है जी।

वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना, मिति 16 सितंबर दिन बुधवार नूं शाम 5:30 बजे।

0: टैंकर्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता।
1: श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ सालों में रक्षा खेत्र में किए गए सुधार बेमिसाल रहे ने अते कई महत्वपूर्ण फैसले लाए गए ने। श्री सिंह ने कहा कि यह उपा यह यकीनी बनाने लिए किए गए ने कि भारत रक्षा खेत्र में दरामदा ते निर्भर ना रहे अते आत्मनिर्भर बनने वाल वधे। ये खबर तुम आकाशवाणी तो सुन रहे हो, साडा एक्सेंडल है @AIRRN जलंधर। देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के निर्विघन वहाव को यकीनी बनाने लिए किशाऊ बहुमंत्री प्रोजेक्ट समझौते पर दस्तखत किए ने। यह राज ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान ते दिल्ली। इस समझौते ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नवी दिल्ली में दस्तखत किए गए। इस मौके श्री शाह ने विश्वास प्रगट किया कि एक बार पूरा होने तो बाद यह प्रोजेक्ट इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किशाऊ प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट ऐलाना। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार लगभग 90% वित्तीय बोझ सहन करेगी, जदों के बाकी 10% माली बोझ राज्यों वालों उठाया जाएगा। इस मौके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सकत्र, केंद्रीय जल स्रोत सकत्र ते संबंधित राज्यों के मुख्य सकत्र भी मौजूद सन। देश विच 15 साल ते इस तों वध उमर दे लोकां दी समुची कार्यबल हिस्सेदारी दर WPR अगस्त विच वध के 52.8% हो गई है, जो कि मार्च 2026 तों बाद सब तों उच्चा पद्धर है। अंकड़े ते प्रोग्राम लागू करन बारे मंत्रालय दे मासिक किरत शक्ति ते बेरोजगारी दे अंकड़े अनुसार पेंडू कार्यबल हिस्सेदारी दर 1.3% वध के 55.8% हो गई है। शहरी WPR अगस्त विच 0.5% अंक की गिरावट नाल 47% ते रही। देश विच 15 साल ते इस तों वध उमर दे लोकां लई बेरोजगारी दर अगस्त विच मामूली तौर ते घट के 5% हो गई है, जदों कि जुलाई विच 5.1% सी। भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती मौके अज राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस मनाया जा रहा है। वह भारत के महान इंजीनियरों विचों एक सन। यह दिवस हर साल 15 सितंबर श्री विश्वेश्वरैया के योगदान याद करने लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर प्रतिभा सन, जिन्हों का राष्ट्र निर्माण बारे दृष्टिकोण नागरिकों हमेशा प्रेरित करता रहेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं ते 13वीं JPSC प्रीख्या लई नियुक्तियां रद्द करने विरुद्ध दायर पटीशनां ते सुनवाई करदिआं राज सरकार नूं 18 सितंबर 2026 तक अपना जवाब दायर करन दे निर्देश दित्ते ने। राज सरकार ने इस लई 4 हफ्तिआं दा समां मंगिआ सी, पर अदालत ने इस बेनती नूं रद्द कर दित्ता। भारत दा राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन अज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रिहा है। इसकी शुरुआत 1969 ऑल इंडिया रेडियो अधीन एक अजमायशी टैलीविजन सेवा वजों हुई सी। पिछले कुछ सालों दौरान यह लोगों तक जानकारी पहुंचाउण, सभ्याचार नूं मजबूत करन अते देश की एकता लई अहम मंच बन गया है। दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवावां जिवें सैटेलाइट अते डायरैक्ट टू होम सेवा राहीं 100% आबादी तक पहुंचण वाला माध्यम है। भारतीय रेलवे ने आगामी त्यौहारां दे सीजन दे मद्देनजर पंजाब दे मुसाफरां दी सहूलत लई 2 विशेष रेलगड्डियां शुरू कीतियां ने। अमृतसर कोलकाता अमृतसर विशेष रेलगड्डी 7 अक्टूबर तों 25 नवंबर तक हर बुधवार चलेगी। दूजी गड्डी अमृतसर बरौनी अमृतसर रेलगड्डी 4 अक्टूबर तों 29 नवंबर तक हर ऐतवार चलेगी। भारत अते अफगानिस्तान विचकार दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच अज दिल्ली के अरुण जेतली स्टेडियम विच खेडे जा रहा है। भारत ने टॉस जीत के पहला गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐतवार नूं खेडे गए पहले मैच 7 विकटां की शानदार जित तो बाद भारत 3 मैचों की लड़ी में 1-0 नाल अगे है। बंगलादेश के प्रधानमंत्री दे सूचना ते प्रसारण सलाहकार डॉक्टर साहिदुर रहमान ने अज कहा कि भारत में रह रहे भगौड़ियां ते दोषियों नूं सौंपना दोहां देशां विचकार संबंधां नूं सुखाला बनाउण लई एक जरूरी शर्त है। मीडिया नाल गलबात करदिआं सलाहकार ने कहा कि कोई भी दोषी अदालत विच पेश हो सकता है, क्योंकि न्यायपालिका हुण पूरी आजादी नाल काम कर रही है। श्री रहमान ने कहा कि यह मुद्दा बंगलादेश विच भारतीय हाई कमिश्नर नाल मुलाकात दौरान भी विशेष तौर पर उठाया गया सी। अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर सुन लो। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नवी दिल्ली विच 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री

चांजर ते कोई शह नहीं बलिए जानू अपनी देना ओ सोने दा की पौना कुड़िए ओ पाले प्यार दा गहना ओ मैं

भावे साड़ी गल न सुने पर असी तेरे ते मर दे। तू आखे

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। आप सबका उमंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हमेशा की तरह पहले सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। लिखा है, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, उसमें समय, धैर्य और तपस्या की जरूरत होती है। धन्यवाद आप दोनों का। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ सहजपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखा है, प्रिय उद्घोषक जी, मन से नमस्कार। आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ज्ञानवर्धक बात बताई। आपका संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद। करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू ने लिखा है, उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें भरपूर मनोरंजन तो होता ही है और इससे हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपका भी संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में अब आप सबका स्वागत है। इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ घटनाएं और कुछ लोक कथाएं। ये लोक कथाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर यदि आप कभी किसी पेड़ के पास से गुजरें तो आप उसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझेंगे, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपने अक्सर उत्तराखंड के चिपकू आंदोलन और उससे जुड़ी गौरा देवी के बारे में जरूर सुना होगा। इस पर हमारा कार्यक्रम भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे चिपकू आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ली की और एक ऐसी महिला की जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया। कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। सन 1730 की बात है। राजस्थान की गर्म और रेगिस्तानी धरती, चारों ओर रेत और उस धरती पर जीवन का सहारा बने हुए थे खेजड़ी के पेड़। एक दिन गांव में कुछ लोग पहुंचे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उन्हें वहां के राजा अभय सिंह के द्वारा पेड़ों को काटने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गांव की एक महिला उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया और पेड़ काटने वालों से कहा, पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। जरा सोचिए श्रोताओं, क्या दृश्य रहा होगा। सामने कुल्हाड़ी लिए लोग और दूसरी ओर एक निहत्थी महिला। पेड़ काटने वालों ने उसे धमकाया, लेकिन अमृता देवी पीछे नहीं हटी। उनकी तीन बेटियां भी अपनी माँ के साथ खड़ी हो गईं और फिर जो हुआ वो भारतीय पर्यावरण इतिहास की अमर घटना बन गया। अमृता देवी

0: का दृढ़ संकल्प देखकर गांव के लोग भी आने लगे और एक एक करके पेड़ों से चिपकने लगे। किसी ने कहा, ये पेड़ हमारे पशुओं का चारा है। किसी ने कहा, ये हमारे जीवन का सहारा है। और किसी ने शायद ये महसूस किया कि पेड़ कटेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी कट जाएगा। श्रोताओ, इसके बाद शुरू हुआ क्रूर संहार। इस बेहद दुखद आंदोलन में 363 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब ये समाचार महाराजा तक पहुंचा तो वे सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अंततः खिजड़ली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। साथियों, आज से लगभग 300 साल पहले, जब पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे, तब इन लोगों ने प्रकृति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम आज कहते हैं पेड़ बचाओ, पानी बचाओ, सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये संदेश भरे पड़े हैं, बड़ी बड़ी कार्यशालाएं होती हैं, उपदेश होते हैं और जिसमें लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ। लेकिन अमृता देवी ने केवल कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखाया था। अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी में किए गए कार्य बोलते हैं। तो श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप किसी पेड़ की छाया में बैठें, उसके फल खाएं, उसकी ठंडी हवा को महसूस करें, तो एक पल के लिए राजस्थान की खेजड़ली गांव की उस महिला अमृता देवी बिश्नोई को जरूर याद कीजिएगा, जिनके लिए पेड़ केवल लकड़ी मात्र नहीं थे लेकिन वो जीवन का आधार थे। आइए सोचें, पेड़ हमारी सांस हैं, हमारे लिए शीतल छाया हैं, वे हमारे जल और मिट्टी के रक्षक हैं और सबसे बढ़कर वे आने वाली पीढ़ियों की विरासत हैं। तो आज हम उमंग कार्यक्रम में मन की उमंग से चलते चलते एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें, एक पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, उसे बड़ा भी करेंगे और उसे बचाएंगे भी। एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तर्ज पर आज हम उमंग कार्यक्रम की ओर से एक नया नारा देना चाहेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ पेड़ बचाओ। और शायद ही यही चिपकू आंदोलन की मूल माता अमृता देवी बिश्नोई को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृता देवी की कहानी पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में पेड़ बचाने के लिए अपना जीवन देने का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। बता दें, देश ने उनके अतुल्य बलिदान को नहीं भुलाया। आज भारत सरकार का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर वन और वन्य जीवन संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, चिपकू आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिपकू आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्यपुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है द क्रो। कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में संदेश दिया गया है कि हम अपने मूल स्वरूप में ही अच्छे हैं, किसी और से हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
3: हेलो मैम।
1: हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू मैम?
1: आई एम गुड, थैंक यू सो मच वान्या। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू। आर यू रेडी?
2: यस मैम।
1: ऑलराइट, you all know that pets are special members of our family, isn't it?
2: Yes,
3: pets are so lovely.
1: Right, Soham.
4: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
1: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
4: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
1: Wow, that's good. And what about you, Navya?
5: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
1: Oh, that's lovely.

0: Now, children, tell me, what did you learn from this poem?
1: Ma'am, all colors are beautiful.
0: Oh, yes. Now, let's have a little game. I'll name the bird and you will tell the color of that bird. Okay?
2: Okay, ma'am.
0: Good.
3: Yes, ma'am.
0: Good. The bird is parrot. Tell me the color.
2: Right.
0: Now, Soham will tell.
4: Green.
2: Yes, it is green. Yes.
0: Right. Now, listen to the sound of parrot. The next bird is sparrow. Now, tell me the color. Who will tell?
2: Me.
0: Navya, Vanya, Soham.
3: Me.
0: Me. Lavish.
5: Ma'am, brown.
0: You're right. Sparrow has mostly three colors. Brown, white and
2: black.
0: Right.
1: Crow is also black, ma'am.
0: Yes, black is a beautiful color. And now listen to how crow sounds.
2: Ah! Ah!
0: Now you all know about the sounds of birds.
2: Great. Yes, ma'am.
0: So children, did you like the poem? Okay, and the song and the little game of birds?
2: Yes, ma'am.
0: Then let's clap for each other. Yay!
6: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सिस्टर निवेदिता. ये कार्यक्रम बंगाल की उल्लेखनीय शिक्षाविद भगिनी निवेदिता के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानकारी देता है. कार्यक्रम बताता है कि किस प्रकार वे श्रीमती मार्गरेट नोबल के रूप में भारत में आईं और स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भगिनी निवेदिता कहलाईं.
7: उत्तरी कलकत्ता के बाग बाजार मोहल्ले में एक विद्यालय है. श्री रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल. वैसे तो हमारे देश में दूसरे विद्यालयों की ही तरह ये भी एक साधारण सा विद्यालय है, लेकिन कुछ अर्थों में ये बड़ा असाधारण भी है. जानते हो क्यों? क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ कुछ असाधारण लोगों के द्वारा बड़ी ही असाधारण परिस्थितियों में किया गया था. सुनना चाहते हो इसकी कहानी? तो सुनो.
8: विवेकानंद आए हैं, उनके साथ एक अंग्रेज मेम साहब भी है.
9: अरे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा करके आया? जरा मेरी शॉल तो दे लो.
8: अच्छा बाबू.
9: और सुन
8: जी,
9: मालकिन से कह देना कि तैयार रहेगी. हैं?

0: भगिनी निवेदिता
1: है?
0: अरे वही अंग्रेज मेम साहब, शायद तेरी मालकिन और चुन्नी दीदी से मिलना चाहे।
1: क्या कह रहे हैं बाबू, मालकिन भला मेम साहब से कैसे बात करेंगी, वो क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी है?
0: इसकी चिंता मत कर माधो, ये मेम साहब दूसरी मेमो जैसी नहीं है।
1: अच्छा?
0: हाँ, बंगला बोल लेती है।
1: ओ।
0: बड़ी नेम धर्म वाली है, स्वामी विवेकानंद की खास शिष्या है।
1: अच्छा?
0: अपना घर बार छोड़कर 100 समुंदर पार से यहाँ आई है, हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगी, यहाँ कलकत्ते में एक कन्या पाठशाला खोलेंगी।
1: वो तो ठीक है, पर बाबू।
0: अरे दुष्ट, स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है और यहाँ पर कर रहा है, जा भाग यहाँ से।
1: अच्छा।
0: पहले मैं उन्हें भीतर ले आऊं। आइए आइए स्वामी जी, भीतर आइए। धन्य भाग है हमारे जो आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हुआ।
2: अरे अरे, ये क्या करते हैं बोस बाबू, उठिए उठिए, माँ काली आपका कल्याण करे, इनसे मिलिए। यही वो आयरिश महिला है मिस मार्गरेट नोबल, जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी।
0: कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है मिस नोबल।
3: धन्यवाद बोस बाबू, किंतु आप यदि मुझे स्वामी जी के दिए हुए नाम से पुकारें तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।
0: यदि ऐसा है तब मैं आपको सिस्टर निवेदिता ही कहूँगा। आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए। आप भी बैठिए सिस्टर।
3: धन्यवाद।
2: अब बताइए बोस बाबू
0: जी,
2: क्या सलाह है? इधर बाग बाजार में स्कूल खोलने पर यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे या नहीं?
0: देखिए स्वामी जी, मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की है। जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, वो भी समाज के डर से उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।
3: अरे, अगर कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है तो इसमें समाज का क्या नुकसान है?
0: नुकसान तो है ही सिस्टर, पुराने लोगों को डर है कि यदि लड़कियां पढ़ गई तो फिर अपनी बुद्धि से सोच सकेंगी, अपना भला बुरा समझ सकेंगी, तब वे समाज से अपनी दुर्दशा का कारण पूछने लगेंगी, समाज की हर गलत सही और उल्टी सीधी प्रथा को मानने से इनकार करने लगेंगी, तब फिर इस अंधे समाज का क्या होगा? समाज में तो हाहाकार मच जाएगा ना।
3: कैसी बातें कर रहे हैं आप बोस बाबू, जब परिवार की बहू बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो उससे तो पूरे समाज का लाभ होगा ना।
0: देखिए सिस्टर, ये बात मैं समझता हूँ, कुछ और पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न तो इस बात को समझता है और न मानने को तैयार है।
3: तब क्या ये स्कूल नहीं खुल सकेगा?
2: खुल सकेगा और खुलेगा। जिस कार्य के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, माँ बहन भाई मित्र सहयोगी सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा, तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा।
3: लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा स्वामी जी?
2: उतावली ना हो निवेदिता, हर काम का समय निश्चित होता है। हाँ तो बोस बाबू
0: जी,
2: यहीं बोसपाड़ा में अगर कोई छोटा मोटा मकान किराए पर मिल जाए तो उसमें निवेदिता अपना विद्यालय खोल सकेंगी।
0: मकान की व्यवस्था आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए स्वामी जी, किंतु मेम साहब के पास घर का कामकाज करने के लिए कोई स्त्री तैयार होगी या नहीं इस विषय में?
2: वो व्यवस्था हो गई है, माँ शारदा मणि के पास एक वृद्धा ब्राह्मणी आती थी, गोपाल की माँ, उससे माँ ने कहा तो वो निवेदिता का खाना बनाने और घर द्वार संभालने के लिए राजी हो गई।
0: चलिए तब तो ये चिंता भी दूर हुई, अब केवल आपके लिए छात्राओं की व्यवस्था कर दी है। वैसे एक छात्रा तो मेरे घर में भी है, मेरी छोटी लड़की चुन्नी। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ पढ़ना लिखना सीख ले, पर उसकी माँ किसी भी तरह तैयार नहीं होती, कहती है कि अगर चुन्नी पढ़ लिख गई तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा।
3: अरे वाह, ये तो उल्टी बात हुई, आजकल के पढ़े लिखे युवक तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी पढ़ी हो। बोस बाबू, आप मुझे एक बार मिसेस बोस से मिलवा सकते हैं, शायद मैं उन्हें चुन्नी को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकूं।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको भीतर ले चलता हूँ।
2: जाओ निवेदिता, शायद ये चुन्नी ही तुम्हारी पहली शिष्या होगी।

0: इस तरह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और बलराम बोस जैसे कुछ और समझदार लोगों के सहयोग से 13 नवंबर 1898 को बाग बाजार के बोसपाड़ा लेन के एक छोटे से मकान में निवेदिता ने अपनी कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी मां शारदामणि भी इस अवसर पर उपस्थित थी। निवेदिता अपनी थोड़ी सी छात्राओं को केवल लिखना पढ़ना ही नहीं अपितु चित्र बनाना, सीना पिरोना, हिसाब किताब रखना सभी कुछ सिखाकर उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहती थी। लेकिन परंपरागत शिक्षा के आदि लड़कियों के माता पिता शिक्षा के इस ढंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए।
1: गुड मॉर्निंग गर्ल्स।
2: गुड मॉर्निंग दीदी।
1: ये सुभाषिनी आज फिर नहीं आई, क्या बात है, बीमार तो नहीं पड़ गई? चारू, तुम गई थी उसके घर?
3: हाँ दीदी, आज मैं उसके घर गई थी। उसकी माँ कहने लगी, इश ये कैसा स्कूल है जी तुम्हारा, वहाँ हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं या खिलौनों से खेलने?
1: फिर तुमने क्या कहा?
3: मैंने कहा कि हमारी निवेदिता दीदी खिलौनों से खेलने को कहती हैं और फिर ना जाने कैसे खेल खेल में हमें बहुत सारी बातें सिखा देती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। इस पर वो बोली कि आज वो स्वयं आपसे मिलने आएंगी।
1: अच्छा ठीक है, तुम तो आज हमें अल्पना बनाकर दिखाने वाली थी ना चारू?
3: हाँ दीदी।
1: ये लो कागज और रंगीन पेंसिल, एक सुंदर सी अल्पना बनाकर उस पर अपना नाम लिखो। और चुन्नी, तुम मुझे कल वाली कविता सुनाओ तो।
4: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
3: दीदी ये माशी माँ है, सुभाषिनी की माँ।
1: आइए आइए ना माँ, वहाँ द्वार पर ही क्यों खड़ी हैं, भीतर आइए ना। जाते चारू, माशी माँ के लिए एक आसन तो ले आ।
3: अच्छा दीदी।
1: नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे विद्यालय की पहली अतिथि हैं, हम आपको ऐसे खड़े खड़े थोड़ी लौट जाने देंगे।
3: दीदी ये लीजिए आसन।
1: बैठिए ना माँ। सुभाषिनी कहती है आप बहुत सुंदर गाती हैं, आप हमारी लड़कियों को चंडीदास के एक दो गीत जरूर सुना कर जाइएगा। किंतु मेरे गाने से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा। क्या कहती है माँ, आप गीता भागवत का पाठ करती हैं तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलता?
5: क्यों नहीं मिलता, जो गीता का उपदेश समझ ले उसका तो जीवन ही सुधर जाए।
1: वही तो मैं भी कहती हूँ, शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान थोड़ी है, शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। आप जो घर में सुभाषिनी को अल्पना बनाना सिखाती हैं, उसे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती हैं, वो भी तो शिक्षा ही है ना माँ?
5: हाँ सो तो है।
1: मेरी लड़कियाँ जीवन के हर पक्ष से, हर रंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं, मैंने इसीलिए ये स्कूल खोला है माँ। अच्छा आजकल सुभाषिनी नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
5: तबीयत तो ठीक है।
1: अच्छा मेम दीदी अब मैं चलूंगी,
5: कल से सुभाषिनी स्कूल आएगी और मैं देखूंगी आस पड़ोस की और लड़कियां भी राजी हो जाएं तो।
1: ये तो बड़ा उपकार होगा मुझ पर।
0: निवेदिता के सौम्य सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उनके विद्यालय की छात्राएं और आस पड़ोस की स्त्रियां बड़ी प्रभावित हुईं।

उन्होंने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा का जो नन्हा सा दीप जलाया था वो बढ़कर एक अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गया। पर निवेदिता सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी, वे चाहती थी कि भारत मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, निर्धनता से मुक्त हो और विदेशी दासता से मुक्त हो। उनका घर बंगाल के कितने ही क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था और उस समय जब वंदे मातरम का उच्चारण भी अपराध समझा जाता था, निवेदिता के विद्यालय में प्रतिदिन सरस्वती वंदना के साथ वंदे मातरम का स्वर भी गूंजता था।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: होने तुसी NCERT द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम उमंग सुन रहे सी। अज इस प्रोग्राम दी तुसी श्रोते हो 1372वीं कड़ी सुनी। आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 MHz अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते सुड़ी दी कड़ी ते समय 8:30 हुण पेश है तुहाडियां फरमाइशां ते आधारित प्रोग्राम पंज पाणियां दे गीत।
3: ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता

0: भारत ने कहा चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य, लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है वहां भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक समझौता है।
3: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा।

0: पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा, ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
2: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए ₹2000 तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। ₹2000 से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि ₹75000 और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा ₹300 प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये $43.81 अरब तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर $26.86 अरब पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें और किसानों को लाभ पहुंचा सकें। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
5: We need to develop sports infrastructure.
6: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
5: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
1: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और नीट प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
7: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
8: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।

0: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने एचआईवी एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कंफर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9।

0: भारती मुंबई दे प्रसारण
1: शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं मंजिल मंजिल फिल्म का गाना। आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है, संगीत आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाजों में लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म का गाना। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत आनंद मिलिन का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति, और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जो विज्ञापनों की दुनिया से फिल्मों की दुनिया में आया और जिसके गाने सुनना आपको

0: जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे गीतकार की जिसके शब्दों में लालित्य है, कविता है और है जज्बात का समंदर।
1: मैं कभी...

प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1971 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें लिखने पढ़ने का शौक रहा और आगे चलकर उन्होंने दिल्ली के एक संस्थान से एमबीए किया। आगे चलकर वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने लगे। लिखने का शौक तब भी जारी रहा और उनकी कॉपीराइटिंग में लिखने का वो शौक झलकता रहा। तब तक प्रसून जोशी की किताब भी छप चुकी थी। इस किताब का नाम था मैं और वो। जब ये किताब छपकर आई तब प्रसून की उम्र केवल 17 साल थी। कई बरस तक प्रसून एडवर्टाइजिंग की दुनिया में सक्रिय रहे। उसके बाद उन्होंने गायिका शुभा मुद्गल के लिए कुछ एल्बम के गीत भी लिखे। फिल्मों में उनका पहला कदम था फिल्म लज्जा के जरिए। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म के कुछ गाने प्रसून जोशी ने लिखे थे। इसके बाद उन्हें यश चोपड़ा प्रोडक्शंस की फिल्म हम तुम में गाने लिखने का मौका मिला। हम तुम के गाने बहुत चले।

इसके बाद तो जैसे मुंबई फिल्म जगत में प्रसून जोशी के कदम जम गए। उन्होंने फिल्म फना के लिए भी गाने लिखे और इस फिल्म के सारे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। प्रसून जोशी की सबसे बड़ी खासियत है वो जिंदगी के बहुत मामूली से जज्बात को पकड़ते हैं और अपने शब्दों के जरिए उसे एक खास रंग दे देते हैं। उनके गीत दिल को छू जाते हैं। फिल्म फना का ये देशभक्ति गीत सुनिए, ये उस दौर का गाना है जबकि देशभक्ति के बहुत नगमे नहीं आ रहे थे। नई फिल्मों में ऐसे गानों की जगह ही कहां बनती है, पर प्रसून जोशी ने अपनी कलम के जादू से इस गाने को अनमोल बना दिया।

प्रसून जोशी ने इसके बाद फिल्म रंग दे बसंती की पटकथा भी लिखी और इस फिल्म के गीत भी रचे। रंग दे बसंती अपनी तरह की एक अनमोल फिल्म थी, सबसे अलग, और इस फिल्म का असर भी बड़ा गहरा था। जरा इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो आपके दिल की गहराई तक उतर जाएगा।

आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर जब बनी तो इसके गाने लिखने की जिम्मेदारी मिली प्रसून जोशी को, और इस फिल्म के लिए प्रसून जोशी ने कुछ अलग ही गीतकारी की।

इस फिल्म के इस गाने के लिए प्रसून जोशी को मिला सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार। आपको बता दें कि प्रसून जोशी कुल 2 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। तारे जमीन पर के अलावा फिल्म चिटगांव के एक गाने के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था।

इस फिल्म में ये मौज मस्ती भरा गाना भी प्रसून जोशी ने लिखा, जो शायद फौजी बैरकों में मौज मस्ती का सबब बन चुका है।

जुलाई 2013 में आई फिल्म भाग मिल्खा भाग, इस फिल्म की कथा, पटकथा, संवाद और गीत प्रसून जोशी ने लिखे थे। इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो फिल्म का शीर्षक गीत तो है ही, साथ ही इस गाने में प्रसून जोशी ने फिल्म के पूरे मर्म को समेट दिया है।

आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रसून जोशी के कुछ अनमोल नगमे। साल 2009 में आई फिल्म लंदन ड्रीम्स का ये गाना जो एक प्रयोग था, और ये प्रयोग बड़ा कामयाब रहा।

जैसा कि हमने आपको बताया, प्रसून जोशी ने गायिका शुभा मुद्गल के कुछ एल्बम्स के लिए नगमे भी लिखे। आपके सावन एल्बम का ये शीर्षक गीत सुनिए।

0: लगता है।
1: प्रसून जोशी का रचनाकर्म अभी भी जारी है और उनके चाहने वाले उनसे नित नए नगमों की उम्मीद करते रहते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार प्रसून जोशी पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोंधी मिट्टी की सुगंध है प्यार, ठंडी पुरवाई है प्यार, बसंत की नवोदित कलियां है प्यार, भावनाओं की नदी है प्यार, सितार के तार से झंकृत मीठी धुन है प्यार, धूप की तपिश के बाद ठंडी छांव है प्यार, प्यार एहसास है, प्यार नीम है, गुलाब है, बेला है, चंपा चमेली है प्यार।

प्यार के शबिस्ता में सिर्फ खुशियों की कलियां ही नहीं चिटकती, दर्द का सैलाब भी उमड़ता है। प्यार के सागर में दो बूंद खारा नमक भी घुल जाता है। जब प्रतीक्षा के पल ठहर जाए, टीस भी उठती है मन में। प्यार के मौसम में आए दर्द की आंधी या बहे टीस का झरना, भला किसे परवाह।

0: सुंदर सी दुनिया प्रेम की, फिर अकुलाहट क्यों, फिर ये बेचैनी क्यों? बेचैन मन कहता है कुछ पहाड़ों से, नदियों और झरनों से, फूल पर मंडराती तितलियों से, हाथ में उल्टा आईना पकड़कर आसमान को उल्टा अपने सामने देखा। ये सब मुमकिन है प्यार की दुनिया में।
1: प्यार पर

तूफान है, आंधी है, इसका नजारा साहिल से नहीं बल्कि पानी में उतर कर जाना जा सकता है। सागर की गहराई है प्यार, करता है प्यार कोई तो बदल जाता है उसका मन, बदल जाती है दुनिया, पूरी कायनात का नजारा कुछ और ही हो जाता है जब जिया जाता है प्यार के पलों को।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। स्मृतियों का गुलमोहर खिला है, लम्हों के पलाश छतनार हुए हैं, प्यार की रात रानी महक रही है। रेडियो से आप सुन रहे हैं छाया गीत। हम कर रहे हैं गुफ्तगू उनसे जिन्होंने भेजी है प्यार की सौगात।

खामोशी के खजाने से चुन रहे हैं कुछ शब्द। बारिश की महीन झींसी की मानिंद सुहानी लगती है उसकी अनकही बातें। वो है कोई इंसान या फरिश्ता या कोई फंतासी, कौन पड़े इस भरम जाल में, सिर्फ महसूस करते रहें उसकी धरती से आसमान तक फैले विशाल प्यार को।

कहा कुछ उन्होंने, सुना कुछ दिल ने, बन गया प्यार का अफसाना। खूबसूरत लम्हों को तह कर संजो लिया है दिल की अलगनी में, आंखों के सामने सिर्फ प्यार की दुनिया है।

एक जमाने में प्यार का इजहार करना बड़ा मुश्किल होता था। चिट्ठियों के जरिए या गानों के जरिए प्यार का इजहार किया जाता था। सूचनाओं संदेशों के युग में जीने वाले लोग क्या जाने प्यार के इजहार के सही मायने क्या होते हैं। अपनी प्यार भरी बातें गानों के साथ जोड़कर करते हैं इजहार कुछ यूं।

बात पे तुम रूठा ना करो, दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा ना करो, वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक, फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया करोगी, सर फोड़ के दीवारों से चिल्लाया करोगी, और दिल भर

तूफान उठेगा मोहब्बत जाग उठेगी, हो जाए ऐसा हाल तो कर लेना मुझको याद, सर के बल चल कर आऊंगा सुनकर तेरी फरियाद, दिल से मेरे खेले हो अब तुम सर से भी खेलो, ये दिल जिगर गुर्दा तुम्हारा है तुम ही ले लो, उस्ताद हूँ मजनू का मैं फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला, तो दिल

ओ बेवफा तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा। तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को हर यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी और दिल

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: Beirat.
1: होने तुसी सुन रहे सी वेव भारती मुंबई के प्रसारण आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 MHz प्रसार भारती की मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR